मखन मथेल की थोरम कया संदुक्तुने तहन जरीबा असी आकाशवाणी इम्फाल की एफएम संगाई चैनल दगिनी हाउजी गमुक पुंफ मसीदा पुदुने लाग जरी सीधे ही धाक।

ताबिरे लैबांग निंग बा इशेगी अहान बखुदोल द वारेपम कुमार खुमन चागी खोंजल द बालेश्वर मैश्नाम ना सैरेंग बा मथंग द लखुचरी बा सैसक बा गुरुमयुम तोंबी शर्मा सैरेंग बना चंदम श्यामचरण।

0: ꯊꯣꯡꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯑꯌꯥꯝꯕ, ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯔꯤꯜ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯑꯅꯤ ꯇꯦꯡꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯥ ꯂꯥꯟ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ꯫ ꯌꯣꯏꯃꯣꯡꯕ ꯇꯥꯎꯊꯤꯡꯃꯥꯡ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯅꯥꯎꯅ ꯃꯈꯥꯔꯣꯝꯗ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯇꯦꯡꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯂꯣꯈꯥ ꯍꯧꯈꯥ ꯌꯧꯕꯗ ꯀꯛꯌꯦꯟ ꯃꯤꯉꯝꯕꯅ ꯍꯨꯏꯌꯦꯟ ꯂꯥꯟꯗꯥꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯇꯥꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯀꯛꯌꯦꯟ ꯃꯤꯉꯝꯕꯕꯨ ꯍꯥꯠꯅꯅꯕ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯅꯥꯎꯅ ꯊꯥꯡ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯇꯨꯇꯦꯡꯂꯣꯟꯗ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯏꯔꯤ:
1: ꯂꯥꯏꯔꯦꯜ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯅꯥꯎꯗꯤ ꯆꯦꯡꯂꯩ ꯋꯥꯡꯒꯣꯂꯦꯟ ꯋꯥꯡꯒꯣꯜ ꯇꯝꯄꯥꯛ ꯂꯥꯏꯅꯥꯃꯨꯡꯗ ꯃꯦꯅꯣꯡ ꯊꯥꯡ ꯁꯥꯔꯦ꯫ ꯀꯛꯌꯦꯟ ꯃꯤꯉꯝꯕꯅ ꯂꯥꯟꯗꯥꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯕꯁꯨ ꯃꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯉꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯊꯥꯡꯅꯆꯤꯡꯕ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯂꯩꯔꯛꯂꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯥꯡ ꯁꯥꯕꯗ ꯆꯠꯅ ꯊꯥꯖꯅꯕꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯉꯥꯛꯇꯨꯅ ꯊꯝꯅꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯏꯪꯒꯤꯠꯇꯤ ꯄꯤꯔꯤ꯫
0: ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ 1935ꯗꯒꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ 1931 ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯥꯟꯈꯤꯕ 24 ꯁꯨꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯃꯩꯗꯤꯉꯨ ꯊꯋꯥꯟ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯍꯥꯛꯇꯛꯇ ꯂꯥꯡꯖꯤꯡ ꯊꯦꯟꯀꯥꯕꯗ ꯑꯉꯝ ꯑꯊꯧꯁꯤꯡꯅ ꯐꯤꯔꯣꯏ ꯐꯤꯉꯥꯝ ꯁꯨꯅ ꯁꯦꯠꯇꯨꯅ ꯇꯥ ꯈꯧꯁꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯥꯡ ꯇꯥꯒꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯐꯅꯅꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯇꯧꯔꯝꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯎꯕ ꯐꯪꯏ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯩꯗꯤꯉꯨ ꯊꯋꯥꯟ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯃꯅꯥꯎ ꯂꯩꯁꯥ ꯄꯥꯝꯕ ꯇꯧꯒꯥꯏꯉꯝꯕꯅ ꯈꯧꯁꯥꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯄꯜꯂꯤ꯫
1: ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯁꯤꯒ� ꯍꯥꯛꯇꯛꯇ ꯊꯥꯡ ꯇꯥꯒꯤ ꯃꯍꯩ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯂꯩꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯊꯧꯗꯥꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯥ ꯂꯥꯟꯗ ꯐꯖꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯐꯪꯏ꯫ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯏꯕꯤ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩꯁꯤꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯗ ꯊꯥꯡ ꯇꯥꯒꯤ ꯃꯍꯩꯕꯨ ꯎꯠꯇꯨꯅ ꯑꯊꯣꯏ ꯑꯍꯦꯟ ꯇꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯁꯛꯇꯨ ꯎꯠꯂꯤ꯫
0: ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ 1987 ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 40 ꯉꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯩꯗꯤꯉꯨ ꯀꯤꯌꯥꯝꯕꯅ ꯃꯄꯥꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯣꯏꯈꯤ꯫ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯛꯇꯛꯇ ꯄꯣꯡ ꯅꯤꯡꯊꯧ, ꯈꯦꯈꯣꯝꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯅꯤꯅ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯅ ꯅꯤꯡꯊꯤ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯃꯐꯩꯗ ꯂꯝ ꯆꯥꯝꯃ ꯄꯥꯛꯄꯕꯨ ꯊꯣꯡ ꯁꯥꯗꯨꯅ ꯂꯥꯜꯂꯒ ꯀꯕꯣꯛ ꯀ꯭ꯌꯥꯡ ꯈꯝꯄꯥꯠꯇ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯥꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯀ꯭ꯌꯥꯡ ꯅꯤꯡꯊꯧꯕꯨ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯇꯈꯦꯜ ꯃꯨꯡꯁꯨꯡ, ꯈꯝꯁꯦꯡꯁꯨꯡ, ꯏꯊꯝꯁꯨꯡ, ꯈꯝꯈꯥꯏꯁꯨꯡ ꯃꯔꯤꯕꯨ ꯂꯟꯐꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯥꯔꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯔꯥꯖꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯅꯥꯍꯜꯅ ꯏꯕ ꯁꯖꯥꯜꯗ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯏꯔꯝꯕ ꯊꯦꯡꯅꯩꯤ
1: ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ 1943 ꯁꯨꯕꯗ ꯃꯩꯗꯤꯉꯨ ꯀ꯭ꯌꯥꯝꯕꯅ ꯀꯕꯣꯛ ꯀ꯭ꯌꯥꯡ ꯈꯝꯄꯥꯠ ꯂꯥꯟ ꯇꯥꯕꯗ ꯄꯣꯡ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯆꯣꯐꯥ ꯈꯤꯒꯣꯝꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯥꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯩꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯁꯒꯣꯜ ꯇꯣꯡꯕ ꯂꯥꯟꯃꯤ 1,000 ꯊꯥꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯀ꯭ꯌꯥꯡ ꯈꯝꯄꯥꯠ ꯆꯥꯏꯈꯥꯏꯔꯦ꯫ ꯂꯥꯟ ꯂꯣꯏꯔꯕꯗ ꯃꯩꯇꯩꯒ ꯄꯣꯡꯒ ꯂꯝ ꯌꯦꯟꯅꯩꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯥꯟꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯩꯇ꯭ꯔꯕꯥꯛꯀꯤ ꯄꯥꯠꯄꯥꯟꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯕ ꯀꯨꯝꯐꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯅ ꯊꯥꯡ, ꯂꯤꯔꯨꯡ, ꯇꯦꯟ, ꯑꯔꯥꯝꯕꯥꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯀ꯭ꯔꯅꯆꯤꯡꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡ ꯄꯥꯏꯗꯨꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯩꯤ
0: ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ 1942ꯗꯒꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ 1947 ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯩꯗꯤꯉꯨ ꯃꯨꯡꯌꯥꯝꯕꯅ ꯄꯥꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯆꯥ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯈꯥꯒꯦꯝꯕꯕꯨ ꯂꯥꯟ ꯇꯝꯕꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯆꯩꯊꯥꯔꯣꯜ ꯀꯨꯝꯕꯥꯕꯗ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯏꯔꯤ: ꯃꯩꯗꯤꯉꯨ ꯃꯨꯡꯌꯥꯝꯕꯅ ꯃꯆꯥ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯈꯥꯒꯦꯝꯕꯕꯨ ꯂꯥꯟ ꯇꯝꯕꯤꯌꯦ, ꯂꯥꯟꯗꯤ ꯁꯤꯟꯊꯣꯏꯕ ꯐꯥꯏꯌꯦ. ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯨꯡꯌꯥꯝꯕꯅ ꯃꯆꯥ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯂꯥꯟꯐꯝꯗ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯟ ꯇꯝꯕꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯎꯠꯂꯤ꯫
1: ꯃꯩꯗꯤꯉꯨ ꯈꯥꯒꯦꯝꯕꯒꯤ ꯍꯥꯛꯇꯛ ꯌꯨꯝꯊꯪꯅꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯒ ꯂꯥꯟ ꯁꯣꯛꯅꯗꯨꯅ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ, ꯅꯤꯡꯊꯧꯔꯣꯜ ꯂꯝꯕꯨꯕꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅ ꯍꯦꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯐꯝ ꯈꯥꯒꯤ ꯈꯨꯟꯂꯦꯟ ꯂꯩꯗ ꯂꯥꯟꯗꯥꯗꯨꯅ ꯈꯥꯒꯤ ꯆꯧꯐꯥ ꯍꯣꯡꯗꯩ ꯂꯥꯟꯊꯧ ꯌꯥꯡꯕꯨ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯂꯥꯟꯗ ꯐꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯏꯔꯝꯃꯤ꯫
0: ꯅꯤꯡꯊꯧꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯛꯇꯛꯇ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯂꯩꯕ ꯕꯪꯒꯥꯜꯗꯒꯤ ꯃꯨꯁꯜꯃꯥꯟꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯄꯗ ꯃꯨꯁꯜꯃꯥꯟ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯄꯁꯤꯡꯗꯨ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯩꯗꯤꯉꯨ ꯈꯥꯒꯦꯝꯕ ꯃꯁꯥꯃꯛꯁꯨ ꯃꯈꯨꯠꯇ ꯊꯥꯡꯁꯥꯡ ꯄꯥꯏꯗꯨꯅ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯂꯥꯟꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯤꯡꯊꯧꯔꯣꯜ ꯂꯝꯕꯨꯕꯗ ꯏꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯂꯥꯟꯗ ꯃꯥꯏꯊꯤꯔꯕ ꯐꯥꯔꯕ ꯃꯨꯁꯜꯃꯥꯟꯁꯤꯡꯗꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯍꯟꯈꯤꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯗꯥ ꯅꯧꯗꯥꯁꯤꯡ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯔꯤ꯫
1: ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ 1600 ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ 1600 ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄꯥꯟꯈꯤꯕ ꯃꯩꯗꯤꯉꯨ ꯆꯔꯥꯏꯔꯣꯡꯕꯒꯤ ꯁꯅꯥ ꯍꯥꯛꯇꯛꯇ ꯊꯥꯡ ꯇꯥꯒꯤ ꯃꯍꯩꯒꯤ ꯂꯤꯆꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯕ ꯑꯉꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯛꯂꯕ ꯆꯥꯏꯅꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯎꯕ ꯐꯪꯏ꯫ ꯃꯩꯗꯤꯉꯨ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯨꯍꯨꯞꯅ tangkun chingburuiga thangal chingsang khok loi hobaga waiton lamdamda china khibagi matang chaitharul kumbabada su irami
0: maidingu pamhaiba kona garib niwas haina khangna khiba ningthau asina lanfam kaya da mai pakna sokna khibagi wafam sing puwari da iramba thengnei maidinguna awasingbu ningthi turel wangmada awagi lamda landa duna awa leibak chai khai khi maitaina awabu ngam khi haibagi khudam khangnana ba kwangmudo laisanggi thongda thangfam haktuna thamdami haibasi chaitharul kumbabada irami
1: lamdam asida crystal lising ma chatret yangkhai ma pandagi crystal lising ma chatret marphutrani pan phawba ningthau oiduna pan khiba maidingu chingthang khomba bhaigachandrana panba matam sa lan yamna kansilaktuna awa lan chenbagi thodok singda thang tagi aruba kanglun ama oiriba ta khawsabagi thodok amadi khawsarogi maming matha kayamarum thon khibagi waram kaya thingnei
0: maram nungsetpa khawsha kokhibagi maramdi maidingu chingthang khombana lanjen bada khebu chingda nungpak amagi mathakta laibak changyengbagi khawsha bagi maongda manipur da ningthau oigadaba leirabadi nungpak asida khawsha bada soidaba oishanu ningthau oiroidaba leirabadi nungpak asidagi onthaduna sirasanu haina wasaktuna khawsha bada soikide nungpak aduda khongun kutta tauna lehokhi maram asidagi khawsaron asibu maram nungsetpa kaukhi
1: adungai awana manipur da landaraktuna chahi tarit khuntaktringai gi haibadi lisingma chanipan tarama pandagi lisingma chanipan kunmanga gi matamda gambhir singh amasung nar singh masing manau anina kasardagi leptana chinglon kaya landuna awa singu takhai raktuna tampakta leiba awa gi tengol singsu takhai bahorakhi asumna gambhir singh amadi nursing machine manauna awa tengol bu thugai rakpagi matangda gambhir singh nongga bu kobo larikta su iramba thengnei
0: nursing maharaj na nongga khrapa matung krista lisinga machani pan yang khaida chandra kirti na amuk ningthau oikhi maidingu asina panba matamda su gambhir singh gi matamdagi hauna lairaklaba thanghaiba akan athau amadi angam athau kaya marum lairamba thengnei थोदों हेदों पनब याब थी थंगाल मेजर सौगाई जाब मेजर लोंजम रोमा सिंह मेजर असिनी
1: ख्रीस्ट लिसिंग चनीपान हूफुत्रा निपान मैदिंगु चंद्र कृतिना कसार साहेब सिंह जिला दरबार चतपदा सिलचर की मपाल कांजई बुंदा पाना सगोल कांजई मुगना लमजेल युबी लापी थांग ताना चिंब कुमी क्या उतुना येंहनबदा बरलाट साहेब हरावदुना महाराज का फोटो नमिन खिबगी वरम राजकुमार सनाहल ने इवा छजा लाइरिक की लमाई चाम तरामा पंदा मरिक चुमने इरी मसीगी मथकता मैदिंगु असिना जिला दरबार चतप असिदा आरामबाई पुरमगी वफम सुथेंगे
0: ख्रीस्त लिसिंग अमा चानीपान मरफुतरा माथोई ब्रिटिश का मणिपुर का सोना की बल्लान फम सिंह अदुदा थांग तागी माही मसिंगी सिंताक पुरेल सिंह अमदी माहिरोई सिंह ना अचौब थौदांग लौखी अमदी मरई बाग की दमकता मथुआई कटखी कुमजा लिसिंग अमा चानीपान मरफुतरा माथोई गी ब्रिटिश का मणिपुर का थेंगना की बल्लान दा मरु ओइना खोंगजोम लांदा मैतै गी थांग तागी महै असी मसक मगुन फजना खंखिबदगी ब्रिटिश ना मणिपुर बु लौसिन ख्रबा मतुंग दगी दी थांग तागी महै तंबा असी थिंगजिन खि मसिगी मतांग दा जनरल कॉलेज ना ख्रिस्ट कुमजा लिसिंग अमा चानीपान मरफु तरा माथोई गी अप्रैल गी तांग कुंथ्रा दा थोकपा चेरोल अमसु लैखि
1: अथिंब कया सिंह असी लेरबसु मैतै गी इपाई पु सिंह ना थांग ता मुटनबगी दमक खुलाई पाइद मवोंग दा सरित सराक हाइब मवोंग अम ओइना यामन लोन थुपन तमनरमी असुमना महै असी लोन थुपन लाकपना चुरा चान महाराज न पानब मतमदा थोखिबा कुमजा लिसिंग मचमापन तरा मरी दगी कुमजा लिसिंग मचमापन तरा निपान फाउबा पृथ्वी की अहान बलंजाव दसु मणिपुर की थांग ता सरित सराक हाइबा मैतै लानमी सिंह चतुना ब्रिटिश की मतिंग पांगलोई लान असिदा जर्मन लानमी सिंगु मैतै लानमी सिंगना हक्थेंगना लानफमदा माइथीब पीबा अमदी थांगता सरित सराक की महि अदु उबदा माइ पाकपगी मना ओइना ब्रिटिश न मैतै लानमी सिंगु ikai khumna bu utna chura chan maharaj bu kc

0: SICBE hyperming to la si piraki
1: matang asida apunba manipur huyen lalong lupki founder president cum president oina leibiriba amadi department of thangta manipur university of culture da guest faculty oina leibiriba ogram mangle mitaina asumna phongdok pirai
2: isu matani pan mongdra mathoi anglo manipur warda thangta na lokhi ba thogang da manipur singi pun sironda hanba mutung aroi ba mayak lar ba tangka mani thangta ibisi manipuri khunai na popo de ilu tongda yagula ba mahi jeiri singi agi mamang de salanda yunon ba leba kya ga lang thang na guna iram dam manipur ning kha tam na thangta gi pambong pangal na nimit kum ma song chau thadu mangan nai na palak ba dum la ba lepa ni kana gi su kha pon ba haina rak ta ba pungsiro ni nimit ta ba nai de hanei ba bidis ka lang thang na si ite gi thangta lena na bidiskina mongmi bom topni mai thirani khangna khangna mera minim mai ra pasin bugum mai onar balam phamda anbali tuna jindem tharak thoi bugum saheb kya kya tikham nan ki malem gi tyas ta thok ki jirwa lam phamni kangla utra samang da bidiski lu chungba khanna ba manga tang lure ni kak tuna hat ki ni isi mutani pan mu drama thoya manipur anglo warda thang ta na lok ki ba thodang si निशिंग दुनतले हो रगदबा इमालेबा की कथो खरवा सेंगबा लामफमगी पुवारी मनी थांगता ना खुगी थवाईनी मणिपुर खनागी पंसिरोन बिदेश की मिखा एक बोन बदगी थांगता सी तुंथिंग थिंगन करे कनागुम बा अमतना थांगता खुजु खुलाय पायर के चतपा युमद थुमजब पाउबा याखि जाय आइ खुगी थांगता गी हैसिंगबा लामफमदा बिदेश न खमौरे कैशु की मथिशु की हाइबदुनी ही सी चौरंग नीमचानीपान औ्राम माथुरी कुंथा निफुमु हौदल खरे इसी चौंपान कुंथा मरी मेगी कुंथा दा महाराज सुराचा निखिल हिंदू मणिपुरी महासभा की सभापति ओखी हिजम मिराबोट समेन्द्र बी ए अतोम बापू शर्मा नचिंग यौखी निफंगी निपान सुबह वारिद अचुम इी मणिपुरी अखोगी थांगता मुना कांगी मुछल लगलब कन्नब होनबद चिंताप थमदुन हिंदम छम निखत्प तंब हाइना यानदन वारियक्सी लौखी मसीगी मतुंगदी इसीमग चमापन कुंथरा मरी ओटोबोट तरेत मणिपुर ग्यालास चचादा कलकपो वमा थांगता लिंगनेगीदमता निखलमी अनिछुबद इसीम चमापन कुंथा तरेत आर के सनान गुनेश्वर थांगता गिलहरी सजान को वमा यानान पुंखी इसीम चमापन कुंथा निपान पांगमम तरंगो ना हिकता थांगता की आम संगन साधुना तंब होगी लिशिंग मचापन या खनी तो सी सी हायर सेकेंडरी स्कूल थांगता की वजा अमा हाथुना सजान तंब होगी लिशिंग मचापन हुंदा अमा तो एजुकेशन डिपार्टमेंट अखनब पोच अमा हाथुना थांगई वजा अमा लेंग थमकी थांगई वजा दुगी ममिंग इबोल सम्रू है खंगे अथुमना एजुकेशन डिपार्टमेंट अखन्ना थम्बग लोना मैती खुना की थांगता तम्बगी येनिंग हनबाउकी
1: मसीगी मखा तारक पदा कुमजा लिसिंग अमा चमापन कुंथ्रा मरी मेगी तांग कुंथ्रा दा मणिपुर की महाराज चुराचान निखिल हिंदू मणिपुरी महासभा की सभापति अमदी हिजम इराबो ना स्वागत कारी ओइदुना नुंथिल पुंग तरुक ताबदा इम्फाल केंद्र द फमखी मसीगी मतांग दा चैथारोल कुंबाबदा अशुमना इब थेंगनै
3: तारा निपानी इमसक कैसदा लेबाक की अंगम मथौ पुनमक तिंदुना श्रीजुत महाराज न सभापति ओइदुना धर्मगी आचार खाइन तकपिए हाइरिबस महासभा असिगी रिजोल्यूशन नंबर निपान दा असुमने इरी मणिपुर हाइब जात आइखोइगी थांगता मुंगना कांगजै असिना सिंगबसी मुसिलपना मरम ओइदुना मसिबु मुत्तनबगी अमदी हिंगन्ननबगी दमकता मतिकचाब गुरु थमदुना अमसुंग सिंदमसंग लिंखतुना हाइरिब बिद्या सिंगसी तंबा
1: हाइरिब रिजोल्यूशन असिगी मखादा सिंताकपुरेल कया मरुमना थांगता असी फोंग न तंबीब हौरखी अमदी लाइरिक कयासु फोंग बहौरखी सिंताकपुरेल तरांगोना इंकुमजा लिसिंगम चमापन कुंथ्रा निपानदा हुईकबता thang tagi oiba manipur gi oiba ahan ba lanai gi sanglin saduna tambi ba hokhi masigi makha tarak pada ing kumja lisinga ma chama pan yang khaini thoida cc higher secondary school da sajal asi tambina bagi da magta special subject ama oina hapchin ki sintagpurel thokchom ibohal singhana ahan ba sajal gi oja oiki
3: lisinga ma chama pan humputara ma thoida education department gi akhanaba order ma gi matungina asigumba thang ta gi mahi asigi da magta permanent post ama thamki adubu cc higher secondary school natana atai government school da haujik phawdi thang ta gi oja hafki badi laitri inkum jali singa ma chamapan humphutra ma pan february gi tang tara mari de gi kunmanga phawba manipur da pangtho khiba manga sub national games asi loishin bagi numitta closing ceremony so gi saruk ama oina thang ta gi oiba so singsu miyoi chatruk mugna saruk yadun utkhe
1: masidagi thang tagi ichel asi leptana chatharak pana lisingani kuntaret ki agas ki tang kuni thoida art and culture government of manipur gi lamjing makha da apun ba thang tagi oiba common syllabus ama sembangam ki lisingani tara humdoi gi july gi tang tara mapan da miyoi mapan na saba committee ama semduna board of secondary education manipur gi makha da class 9 ama di 10 da optional subject ama oina hapna bagi thabak hauki
3: high river committee asina syllabus semduna ama di larik puthok tuna lisingani tara mari session de gi thang ta asi optional subject ama oina school sing da tamna ba hauki masigi makha tarakpada council of higher secondary education manipur nasu class 11 ama di 12 da thang ta asisu optional subject amu oina hapsinana ba thabak paikat pahorki
1: masigi saruk ama oina lisingani tara manga gi april gi tang ani da miyoi tara ni thoina saba committee ama semduna masigi mathau ta ba syllabus semba ama di lairik inabagi thabak paikat pahoki kumja lisingani tara manga da linkhat ki ba manipur university of culture da thang ta gi oiba department ama leiduna graduate ki thak ta thang ta tambina bagi thabak paikhat pa hokhi masigi sharuk ama oina lisingani tara taruki megi tang tara tareta syllabus committee ama semduna thabak hokhi
3: ngasidi lamdam masida thang ta gi mahi masing sindam sangkaya inat ki lup singna linkhat naraktuna yamna khumang chaukshi lagli high river sindam sang singasina thainagi maitei gi thang ta gi mahi masing bu khongul liduna thizin bagal hoinana sindam sang sing asida thang ta gi mahi masing sibu pamjaba thawai yauba mahi roi kaya chang nai na tamnari matam mamada mutlagadra haina phawba mipai naru raba maitei gi thang ta gi mahi masing asi ngasidi sindam sang sing kaya mathang mathang linkhat naraktuna kumang sauksilapagi masakaya ubo phangli
4: tabire chaukthukche ima manipur tarataret shubatangkakta thangta ayiba dr ahibam rishikesh singh assistant professor department of thangta manipur university of culture thoram lanthukpi kibal singh konjimum nirmala chenuomadi konshamajit thoram puthukpa wairakpam sharbajit matangasi da khonjalna chum sandukchabalu sinjeri Akash Banimphal, how do you keep on tarit makaitare, manipuri the pau, tapa pangbiragani.

आकाशवाणी इम्फाल हौजुक फाउबगी मरोयब पाउ राज्यपाल अजय कुमार भल्लागा केन्द्रगी यूथ अफेयर्स अमसुंग स्पोर्ट्स की राज्य मंत्री रक्सान निखिल खर्शेगा उनदुना राज्य सिकी सानो खोनबगी लमदा साखो थरांग सिंह पखनब खनक्रे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर फगरहनबा एथलेट सपोर्ट सिस्टम पक्तोक सौथोगनबा हाइथोय सिंथोयरब राज्य सिकी नहा सिंगा सानो खोनबगी खुदोंग चाबा हेन फंगनबगी मतांगदसु खनके मणिपुर पुलिस के अनुभव गारी सिंह मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ना हाउसिंग है कि मंत्रुंग दा मणिपुर राइफल्स के पेरेड ग्राउंड द खुशी नरगनी थोरमधु दा गृहमंत्री गोविंदास कुंठोक जमसु सरुक यागनी इंडिया मेट्रोलॉजिकल इंफाल सेंटर हाइरी नसी मसुंग हाई राइजे सिकी सिंह मसुंग तपाकी टोंगान टोंगान बजिला सिंह दा अखाक अराव याउना नोंग चुरब याय केंद्र की फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री मसुंग डेरियंग की मंत्री राजीव रंजन सिंह ने प्रधानमंत्री मत्स्य संप्रा योजना मसुंग फिशरीज एंड एक्वाकल्चर डेवलपमेंट फंड की मखाद मेजोराम द लुपा कोटी कुंट्रा निटो हेनबर की प्रोजेक्ट खर की उरेब उयुंग तमगनी खर ने संगागनी श्री राजीव रंजन सिंह नंगसी मेजोराम द लाक्तुना आइजोल द पांगथोकदब अवांग नोंपोक लमदम सिंह की रीजनल रिव्यू मीटिंग द सरुक यारगनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन नंगसी पांगथोकदब सिविल इन्वेस्टिचर सेरोमोनी कुमसी चाही की पद्म अवार्ड हम्बू तरुक एंथोलगनी राष्ट्रपति ने पद्म विभूषण अवार्ड अनी पद्म भूषण तरुक पद्मश्री मना यांखै निपान एंथोकनी मपाल थौरम मंत्री डॉक्टर एस जय शंकर ने हाई भारत अमेरिका ने टेररिज्म थेनामीनबद अचेत फिरेब थमली मांग हाई लेबाक अनी टेररिज्म बु लम खांगदुना कैदौनुंगदा लैरोय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ना थासी कुनिपान पांगथोकनी तौरम्बा कमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट क्वेट लिसिंगनी कुंतरु की परीक्षा अदु एथोक्रे अमसोंग लैबागासिगी तोंगान तोंगान मफम सिंग साबगी चांग हिंगलकपदगी अवाब कया मायुक नरी भारत की कोनुंग नाइ दिल्ली दा सेल्सियस डिग्री निफु मरी यौना सारे पाउलो जरे

धन्यवाद केनी। नमस्कार खुरमचरी दोस्तों, मैं निंगथो खोंगजम रंजना आप सभी का स्वागत करती हूँ 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रसारित संगाई चैनल में।

दोस्तों आज गीत माला में आप सुनेंगे कार्यक्रम गाने नए पुराने। तो सुना जाए कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म हम साथ साथ हैं से उदित नारायण, शंकर महादेवन, हरिहरन और हेमा सरदेसाई की आवाजों में। इस गीत को संगीत दिया राम लक्ष्मण ने।

दोस्तों एबीसीडी से याद आया एक और गीत, आइए सुनते हैं फिल्म प्रेम दीवाने से अलका याग्निक और उदित नारायण के युगल स्वर में, आनंद बख्शी के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

दोस्तों अब सुना जाए एक प्यारा सा गीत आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में. फिल्म का नाम है जॉनी मेरा नाम. राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं और कल्याण जी आनंद जी का संगीत.

अब सुना जाए एक और गीत जिसमें प्रेमिका अपने प्रेमी से प्यार का इजहार करती हुई ये गीत गाती है. फिल्म का नाम है राजा. अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में, समीर के बोल हैं और नदीम श्रवण का संगीत.

दोस्तों, प्यार का इजहार करता हुआ एक और गीत, लेकिन अलग ही अंदाज से, लता मंगेशकर की आवाज में है। फिल्म का नाम है गुलामी, शब्द रचना गुलजार के हैं और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

दोस्तों आप सुना जाए कार्यक्रम का आखिरी गीत कविता कृष्णमूर्ति और बाबुल सुप्रियो की आवाजों में फिल्म अग्नि साक्षी से समीर के अल्फाज हैं और नदीम श्रवण का संगीत।

इस गीत के साथ आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है. ट्यून करते रहें संगाई चैनल, साथ ही स्वस्थ और सुरक्षित भी रहें. आज्ञा दीजिए. नमस्कार.

ताबिरे गीत मालागी थौरम आकाशवाणी इम्फाल हौजी अमुक संदोक चरी अरीबा फिल्म अमदी मतम इसई मतंग मतंग होइना

0: ꯊꯣꯛꯏ ꯀꯣ ꯃꯁꯤꯅ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯅꯣꯡ ꯍꯦꯛ ꯆꯨꯕꯗ ꯎꯅꯥ ꯋꯥꯅꯥ ꯅꯥꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯐꯥꯖꯤꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯨꯔꯦꯜꯁꯤꯡ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯪꯆꯥꯎ ꯍꯦꯛ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯗꯕ ꯃꯇꯝꯗꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯦꯜ ꯈꯛꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯤꯛꯅ ꯆꯦꯜꯂꯤꯕꯅꯤ ꯅꯪꯕꯨ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯕꯣ
1: ꯇꯥꯏꯌꯦꯃꯥ
0: ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯎꯄꯥꯜ ꯋꯥꯄꯥꯜꯒꯤ ꯎꯔꯥ ꯋꯥꯔꯥꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯁꯤ ꯐꯥꯖꯤꯟꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯆꯤꯡꯃꯥꯏ ꯀꯤꯟꯊꯔꯛꯄ ꯇꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕꯅꯤꯅꯦ
1: ꯑꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤꯁꯨ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯕꯟ ꯃꯣꯍꯁꯣ ꯄꯥꯂꯟ ꯇꯧꯔꯤꯗꯣ ꯀꯨꯝꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟꯗ ꯊꯥꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯎ ꯆꯥꯔꯥ ꯑꯅꯤ ꯑꯅꯤ ꯄꯤꯔꯛꯑꯦ ꯊꯥꯐꯝ ꯂꯩꯇꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯕ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯑꯍꯜꯁꯤꯡꯒ ꯊꯝꯃꯤꯅꯧ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯍꯩꯅꯧ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯃꯒ ꯊꯩꯕꯣꯡ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯃꯒ ꯄꯨꯔꯛꯏ
0: ꯐꯔꯦꯗ
1: ꯄꯥꯕꯨꯡꯅ ꯂꯩꯄꯜꯗ ꯊꯥꯈꯤꯕꯅꯦ ꯍꯧꯔꯕꯅꯦ ꯏꯃꯥ
0: ꯑꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤꯅꯦ ꯏꯕꯦꯝꯃ ꯃꯍꯧꯁꯥ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯈꯜ ꯀꯥꯏꯍꯟꯗꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩꯁꯤꯡꯅ ꯈꯪꯂꯛꯄꯗꯒꯤꯅꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯗ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯛꯏꯗꯣ
2: ꯅꯪ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯃꯩ ꯊꯥꯔ ꯃꯥꯜꯂꯦꯅꯦ ꯍꯦ ꯃꯅꯝꯁꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦꯅꯦ ꯍꯦ
1: ꯇꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯤꯀꯣ
0: ꯈꯤꯠꯇꯅꯤꯗ ꯅꯥ ꯋꯥꯅ ꯃꯩ ꯍꯧꯒꯠꯄꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯈꯔ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕꯗꯨꯅ ꯈꯔ ꯈꯤꯠ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯈꯖꯤꯛ ꯈꯔ ꯊꯥꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯊꯤꯅ ꯁꯣꯛꯑꯣꯏꯗ
2: ꯍꯩ ꯅꯪꯒꯨꯝꯕꯤ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯔꯣꯝꯁꯤꯅ ꯈꯖꯤꯛ ꯈꯖꯤꯛꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯦꯛ ꯃꯊꯥꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯗꯒꯦ ꯈꯜꯂꯨꯅꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯗꯤꯅꯦ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯗꯅꯦ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅꯤ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯅꯪꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗꯅꯦ ꯑꯣꯍꯥꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯇꯨ ꯁꯦ ꯁꯦ ꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯐꯣꯇꯣꯒ ꯀꯣꯟꯅꯅ ꯇꯨ ꯆꯠꯅ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯊꯨꯒꯥꯏꯗꯨꯅ ꯌꯥꯟꯊꯠꯂꯒ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄ ꯎ ꯕꯤꯝ ꯕꯤꯝ ꯊꯟꯅ ꯌꯥꯎꯕ ꯇꯨ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯐꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯨꯁꯦ
0: ꯏꯁ ꯍꯥꯏꯒꯨꯝꯕꯗꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅ ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯦꯗ ꯁꯤꯗꯤꯌꯥ ꯄꯦꯜꯂꯦꯗ ꯀꯣ ꯁꯩꯇꯥ ꯑꯣ ꯁꯩꯁꯦ ꯑꯩ ꯆꯥꯛ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯣꯡꯅꯕ ꯇꯧꯔꯨꯈꯤꯒꯦ ꯅꯣꯏ ꯅꯄꯥꯅ ꯆꯥ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯖꯍꯧꯔꯣ
2: ꯌꯥꯝꯕꯅꯤ ꯌꯥꯝꯕꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗꯗꯤ ꯐꯥꯔꯤꯕꯁꯤ ꯅꯠꯇꯅꯅꯦ ꯎꯖꯥꯎ ꯀꯌꯥ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯟꯖꯤꯟꯕ ꯎꯃꯪꯁꯤꯡꯗꯅꯦ ꯌꯥꯟꯊꯠꯂꯒ ꯂꯩꯔꯝꯈꯤꯅꯤ ꯇꯧꯕꯒꯤꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗꯨꯁꯨ ꯍꯤꯡꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯤꯕꯗꯅꯦ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯗꯅ ꯌꯥꯟꯕꯕꯨꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨ ꯃꯁꯤꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯃꯥꯡꯕꯗꯨꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯨꯞꯅ ꯐꯪꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯝꯅꯤꯅꯦ ꯑꯩ ꯕꯤꯃꯥ ꯂꯥꯎ ꯂꯥꯎ ꯂꯥꯎ ꯂꯥꯎ ꯂꯥꯎ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯦ ꯀꯥꯡ ꯌꯥꯝꯁꯤ ꯀꯥꯡ ꯁꯤꯍꯟꯕꯒ ꯌꯥꯄꯣꯟꯗꯦꯀꯣ
1: ꯍꯣꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡ
2: ꯑꯥ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯐꯝꯃꯒꯅꯦ ꯈꯕꯔꯁꯤ ꯄꯥꯔꯣꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯣꯅꯦ ꯂꯥꯛꯑꯣꯅꯦ ꯂꯥꯛꯑꯣꯅꯦ
1: ꯄꯥꯕꯨ
2: ꯍꯥꯎꯅꯦ
1: ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯀꯥꯏꯍꯟꯕꯗ ꯎꯃꯪ ꯀꯣꯛꯊꯣꯛꯄꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯎꯃꯪꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣꯛꯊꯣꯛꯂꯤꯁꯤꯕꯨ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ
2: ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯁꯤꯁꯨꯅꯤꯀꯣ
1: ꯑꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅꯅꯣ ꯄꯥꯕꯨ
2: ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯁꯤꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯇꯦ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯦꯡꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯗꯤ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯁꯨꯝ ꯁꯨꯝ ꯁꯨꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯨꯝꯂꯤꯡ ꯈꯨꯂꯤꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯐꯝ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯗꯨꯗ ꯆꯪꯕ ꯃꯆꯥꯛ ꯇꯥꯔꯝꯕꯗ ꯎꯃꯪꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯆꯪꯉꯛꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯄꯗ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯎ ꯌꯥꯟꯊꯠꯂꯤ ꯎꯃꯪ ꯀꯣꯛꯊꯣꯛꯏ
1: ꯄꯥꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯔꯣꯛ ꯑꯆꯧꯕꯗꯨꯁꯨ ꯄꯥꯛꯊꯣꯛꯂꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯃꯇꯥꯏꯗ ꯍꯧꯔꯝꯕ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ ꯈꯣꯡꯅꯥꯡ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯥꯁꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯣ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯥꯟꯊꯠꯍꯧꯔꯦꯡꯉꯣ
2: ꯃꯗꯨꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯄꯥꯝꯂꯧ ꯎꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯡ ꯊꯥꯅꯕ ꯎ ꯌꯥꯟꯗꯨꯅ ꯌꯣꯜꯂꯒ ꯁꯦꯜ ꯇꯥꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯁꯨ ꯀꯣꯛꯊꯣꯡ ꯑꯃ ꯌꯥꯟꯅꯔꯤꯕꯅꯤꯗꯣ ꯏꯕꯦꯝꯃ
1: ꯑꯣ
2: ꯌꯦꯡꯉꯨꯅꯦ ꯁꯤꯗ ꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯀꯨꯝ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃ ꯆꯃꯥꯄꯟ ꯃꯔꯐꯨꯗ꯭ꯔꯥꯗ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃꯗ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯎꯃꯪ ꯀꯣꯛꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯂꯤꯌꯟ ꯍꯦꯛꯇꯔ 6.1ꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯁꯨꯝ ꯎꯃꯪ ꯋꯥꯃꯪꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯣꯛꯊꯣꯛꯄ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯏꯕꯦꯝꯃ ꯅꯣꯡꯕꯨꯗꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯁꯤꯗ ꯎꯃꯪ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯎꯕ ꯐꯪꯗꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯅꯤꯀꯣ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯏꯪ ꯑꯁꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯤꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯀꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤꯅꯦ
1: ꯑꯗꯣ ꯕꯥꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯂꯦꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯄꯨꯔꯛꯂꯤꯁꯤꯕꯨ उमंग कोक्थोपा सी खक्ता ना ओय दो जात ल
2: नते नते नते उमंग कोक्थोपा खक्ता ना मालेम दा अहोंग बला रिब नते दा एवे मिओय बना चाखत प चाखत पाय दना बिज्ञान गी पोथो कया पुथोली धोरता हाई ब पोथोक सिंग असिना एकोई मिओय बना हिंग बदादी कया द नुंगा हलिब अदुबो हाई ब पोलम सिंग असिना नाकल अमरोम दा महौसा गी फिबम दा अहोंग ब कया म थोलिब निने
1: अदुना दिपाबो चावर चावर ब फैक्ट्री अगे इंडस्ट्री मयाम लिंखलक पसिनासु अहोंग ब पुरक पदा सरुग यारम बतारे क्वा अदेगे पेट्रोल डीजल न चेन ब मखल मखा कया गी गाड़ी पुथुरक ली फजा फजा ब कार यांग लब ट्रेन अदुग बाबुआ अतिया द पाई ब एरोप्लेन सुनजंग द थागली ब रॉकेट समुद्र द होली ब जहाज मयाम म लेपत न पुथुरक ली मसिना एकोई मियोई बदा काना बयाम न पीरी
2: शान हाई बा पुन मक्तो साइंटिस्ट सिंग न एकोई मियोई बगी काना न बा नुंगाई न बा पुथोरक ली बा लाक्तनी ने अदुना नशी दी साव खरब माले मसी मफम अमगा कया द नक्सिल हल्ला बन
1: अदुगा पाबुंग न दी मसी न अकोई बगी फिबम द अहोंग बा पूरा इहाई दुबु कमाई न नो हाई बा
2: छे छे छे इपा हाई गे छे मुन्ना तारो एकोई मियोई बना निशा सोर होन बदा ऑक्सीजन चंगी मसी उपाल वापाल मयाम सिना एकोई द पीबन अदुगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट मयाम सिजिन नरीबा इंजिन सिंग अदेगी मई थाबदा सिजिन नरीबा गैस सिंग एन सिंग असिनादी कार्बन डाइऑक्साइड थादोरे इबदिंगो को करी थादोरे मोना
1: कार्बन डाइऑक्साइड
2: थादोरे मदु उपाल वापाल सिंग ने सुपसिली अदुबु मियोई बना कार्बन डाइऑक्साइड पुथोक लीबा पोलम ना ले प्लेट ना पुथोरक पा मधुबु सीजन ना गदौरी बा उपाल वपाल सिंह ना सुम सुम सुम हंथरक लबदी नुंसित याव ऑक्सीजन के सांग से हंथरा ओइद्रो
1: अस हंथरा कनिबु बाबु
2: आ दिदेगे इशान ना साई हाई किबदा इंडस्ट्री एम सुंग फैक्ट्री सिंह ना सीगी पोथोक ना एखोइदा काना बकया पीरबसु मखोइना नुंसित की कुयोम दा कार्बन डाइऑक्साइड हेंगलन बगी सांगदी याम ने सुम सुम सुम वंग खले अदुना नाकल अमरोम दा मखोई सिना मियोई ब एखोई दे दे याम ने चाउने सेथिं बीरी बनी ने
1: अदुए दि पाबुआ मालेम गे अकोई बगी फिबम ngak सेन बहाय बसिदी एखोई मियोई बन लौगद ब थौदांग ओइरमे ने
2: सानो हरि बदो अनाउ द चुंगर ब वाफुम ने मसिदी मालेम गी मिपुम खुदिंग न वाखल तामिनबा अमदी दरकार ओइसे सुम न मक्तब कोइ मंगा तारा न वाखल तारम नियदना हौ हौ सुंग बका न दी कैसु काना गद बन तेदा समुद्र इसित बाहेब दो तादु तो कदो मिने अजुना मालेम गी साखत लब लेबाक सिंग देदी इंडस्ट्री फैक्ट्री लिंग खत पमतम द अकोइ बगी फिबम द का हेन अकाइ ब थो ओलोय दबा टेक्नोलॉजी से सीजन न ब हौन खरबनी ने फरे फरे फरे नमाने ने साफ थोंगी दो मतीन घर पांसलोरो चलो
1: होय पाबू

ताबिरे याइफाय युम्बाल थोरुम्दा का हेन सागलकपदगी चेक्सिन गदबा हाइब हिरम असिदा मणिपुरगी नेशनल प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ NPCCHH की स्टेट नोडल ऑफिसर डॉक्टर येंखोम निवेदा देबीगा उनदुना साबा वारिवाताय उनबिखिबा लोइटोंगबम रंजना थोरुम पुथोकपा थोकचोम रेनुबला

0: Akaswani Imphal, makataba thawram asi dile dagi rilida tabirasi.
1: यह आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है. कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए. ये आकाशवाणी है. अब हम आपको राष्ट्रपति भवन लिए चलते हैं, जहां से आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन सकेंगे. विवरण दे रहे हैं महेंद्र सिंह लालस और लालिमा अनेजा. आइए राष्ट्रपति भवन चलें.
2: नमस्कार. राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप से मैं महेंद्र सिंह लालस अपने साथी कमेंटेटर लालिमा अनेजा डैंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं. राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज यहां 66 विभूतियों को पद्म अलंकरण प्रदान करेंगी, जिनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री शामिल हैं. नागरिक अलंकरण समारोहों का ये पहला चरण है और दूसरे चरण में शेष रहे पद्म अलंकरण प्रदान किए जाएंगे. अभी हमारे बीच माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, लोकसभा अध्यक्ष, माननीय गृह मंत्री जी, ये तमाम अतिथि आ चुके हैं और कुछ क्षणों में यहाँ पर पधारेंगी. राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू.
3: नमस्कार एंड अ वार्म वेलकम टू पार्ट 1 ऑफ द सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी as we broadcast from the Ganatantra Bhavan at Rashtrapati Bhavan in the august presence of dignitaries and the proud recipients of the prestigious awards and their family members. And friends, today is the day when Padma Awards, the highest civilian awards of the country, shall be presented by the first citizen of the country, Honorable President Srimati Draupadi Murmuji. The awards are given in various disciplines like art, social work, public affairs, science and engineering, trade and industry, medicine, literature and education, sports, civil services, etc. Padma Vibhushan is awarded for exceptional and distinguished service, and Padma Shri and Padma Bhushan is for distinguished service of high order, and Padma Shri is for distinguished service in any field. Friends, the awards are announced on Republic Day every year.
2: इस वक्त राष्ट्रपति जी का यहाँ पर इंतजार. हम ये बता दें कि राष्ट्रपति भवन का ये ऐतिहासिक गणतंत्र मंडप, जहाँ पर 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट ने शपथ ली थी, ठीक यहाँ पर राष्ट्रपति जी के आसन के ठीक पीछे 5वीं शताब्दी की मथुरा की ऐतिहासिक बुद्ध की प्रतिमा, जो कि गंधार शैली में बनी है, और ठीक बीच में यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर शैंडिलियर और इसके ठीक ऊपर सांची के स्तूप से प्रेरित गुंबद और 12 बहुत ही सुंदर जैसलमेरी पत्थर के बने

0: राष्ट्र गीत और राष्ट्रगान प्रस्तुत किया था महार रेजिमेंट सेंटर सागर के बैंड ने। सुबेदार पीवी गुरुंग इसका कर रहे थे।
1: माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो पद्म पुरस्कार 2026 के अलंकरण समारोह की कार्रवाई आरंभ की जाए।
0: राष्ट्रपति जी ने कार्यक्रम शुरू करने की स्वीकृति दी। उन्होंने सुनहरे रंग की फिरोजी रंग के बॉर्डर वाली साड़ी पहनी है और मंच पर आसीन। अब कुछ ही पलों में प्रस्तुतीकरण शुरू होने वाला है।
1: श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय, उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: सबसे पहले महान अभिनेता हीमन के नाम से मशहूर, जिन्होंने 6 दशक तक कैरियर रखा है, 300 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। 86 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी पद्म विभूषण प्राप्त करने जाती हुई।
2: Shri Dharmendra served as a member of parliament in the 14th Lok Sabha, representing the Bikaner constituency in Rajasthan from 2004 to 2009. And he was known for his emotional bond with his constituents.
1: Dr. Shrimati N. Rajam, Kala Violin.
0: 87 वर्षीय Dr. Shrimati N. Rajam भारतीय शास्त्रीय संगीत की पहचान है और वायलिन के क्षेत्र में एक अनूठा नाम है। आप एर्नाकुलम में जन्मी थी और पंडित ओंकारनाथ ठाकुर से आपने वायलिन की शिक्षा प्राप्त की।
2: Beyond her illustrious performing career, Dr. Rajam served with distinction as a professor in the Faculty of Performing Arts at the Banaras Hindu University for nearly 4 decades and rose to become the head of department and subsequently dean of faculty, earning the prestigious title of Emeritus Professor by BHU.
1: Padma Bhushan, Shatavdhani Dr. R. Ganesh, Kala Avdhan.
0: अवधान के विशेषज्ञ 64 वर्षीय शतावधानी डॉक्टर आर गणेश कलम और कागज की किसी भी सहायता से, उसकी सहायता के बिना छंद लिखते हैं और इन्होंने 1300 से ज्यादा अष्टावधान और 5 शतावधान लिखे हैं और 70 से ज्यादा पुस्तकें भी।
2: डॉक्टर आर गणेश इज आल्सो अ प्रोलिफिक ऑथर, हैविंग मोर देन 70 बुक्स टू हिज क्रेडिट।
1: भगत सिंह कोशियारी लोक कार्य।
0: भगत सिंह कोश्यारी, जिन्हें भगत दा के नाम से जाना जाता है, आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे, 74 वर्षीय और लोक सेवा का अनूठा काम किया है, राष्ट्रवादी नेता है।
2: श्री कोश्यारी स्टार्टेड टीचिंग एट सरस्वती शिशु मंदिर कासगंज उत्तर प्रदेश, वेयर ही वर्क्स टू इंपार्ट भारतीय वैल्यूज अलोंग विद मॉडर्न एजुकेशन टू यंग चिल्ड्रन।
1: श्री उदय सुरेश कुमार कोटक, व्यापार एवं उद्योग।
0: 67 वर्षीय कोटक, आपने कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड से शुरुआत की और आज कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड जैसा एक बड़ा आयोजन इन्होंने किया है।
2: श्री कोटक हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिफाइनिंग एंड डेवलपिंग इंडियाज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर ओवर 4 decades एंड ही लीड्स सेवरल की बॉडीज सर्विंग एज को चेयरमैन ऑफ इंडो यूके फाइनेंशियल पार्टनरशिप।
1: विजय कुमार मल्होत्रा मरणोपरांत लोक कार्य, उनके पुत्र श्री अजय कुमार मल्होत्रा।
0: बीते 30 सितंबर 2025 को श्री मल्होत्रा का निधन जरूर हो गया था, लेकिन आप एक खेल प्रशासक थे और एक राजनीतिज्ञ और अकादमिक भी थे। उनके बिहाफ पर अजय कुमार मल्होत्रा पद्म भूषण प्राप्त करते हैं।
2: A pioneer in sports, Professor Malhotra served over 40 years as the president of Archery Association of India.
1: रामास्वामी पल्लीस्वामी चिकित्सा गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी।
0: 77 वर्षीय डॉक्टर पलनी स्वामी देश के प्रतिष्ठित गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं। आपने 2007 में पद्मश्री सम्मान भी प्राप्त किया था।
2: He also served as president of the Society for Gastrointestinal Endoscopy of India, where he initiated a task force to form
1: guidelines.
2: श्री
1: पीयूष पांडे मरणोपरांत कला विज्ञापन, उनकी पत्नी श्रीमती नीता जोशी।
0: पीयूष पांडे, कौन नहीं जानता उन्हें, विज्ञापन की दुनिया में एक अनूठा नाम। 70 वर्ष की उम्र में 24 अक्टूबर 2025 को इनका निधन हो गया। नीता जोशी उनके बिहाफ पर ये पुरस्कार प्राप्त करती हैं।
2: श्री पांडे वाज नेम्ड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एडवर्टाइजिंग मैन इन इंडिया बाय द इकोनॉमिक टाइम्स।
1: श्री विश्वबंधु मरणोपरांत क कला लोक नृत्य उनकी पत्नी श्रीमती इंदु देवी।
0: विश्व बंधु जी,

0: कर रहे हैं। आपने गुलाबी रंग का जैकेट पहना हुआ है, सबका अभिवादन करते हुए और राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए गुरुजी का इन्हें संबोधन दिया जाता है।
1: श्री भरत सिंह भारती रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द सागर फेस्टिवल इन मॉरिशस इन 1987 व्हेयर हिज एल्बम पुरब्यातान वाज रिलीज्ड। He has also guided a new generation of artists as a judge and mentor.
2: Shri Tagaram Bhil Kala Algoza Badan.
0: Jaisalmer ki Tagaram Bhil अलगोजा बजाते हैं। कितना सुंदर साज जो कि शीशम और कैर की सूखी लकड़ी से बना होता है। इन्होंने जैसलमेरी पट्टू पहना है और ऊपर जैसलमेरी साफा चुंदड़ी का।
1: Shri Tagaram is the recipient of numerous awards and honors and appreciation certificates. He has received a Maharawal Girdhar Award in 2013 by Maharawal Girdhar Trust Jaisalmer and many, many other awards. He got many opportunities.
2: Harmanpreet Kaur Bhullar, Khel Cricket.
0: कौन नहीं जानता हरमनप्रीत कौर को, जिन्होंने राष्ट्र के लिए विश्व कप की ट्रॉफी उठाई थी। 37 वर्षीय हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान, सुनहरे रंग का परिधान पहना हुआ राष्ट्रपति जी के सामने जाकर अपना पद्मश्री स्वीकार करती हुई।
1: Her achievements have not only strengthened India's presence in international cricket but have also contributed significantly to the growth.
2: Shri Ratilal Mohanlal Borisagar, Sahitya evam Shiksha.
0: 88 साल के हैं रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर और गुजरात में कितने ही बच्चों के चेहरों पर इन्होंने मुस्कान पैदा की है क्योंकि ये कॉमिक्स और हास्य लेखन के लिए मशहूर हैं।
1: Yes, he has received many awards and honors and after 36 years his students have established a foundation in 2011 for literary and educational activities. He's also written a biography, Raman Bhai Nilkant.
2: Shri Kumar Bose Kala Tabla.
0: Kumar Bose Tabla में एक बहुत बड़ा नाम है। आप 4 अप्रैल 1954 को जन्मे थे और पिता विश्वनाथ बोस से सीखा, लेकिन बाद में ये पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज के भी शागिर्द रहे।
1: Shri Bose's quiet dignity, ethical integrity and unwavering commitment to classical values have earned him top grade status in All India Radio, the Sangeet Natak Academy Puraskar and Pandit Dinanath Mangeshkar Award along with immense respect
2: Shri
1: within the artistic
2: Janardhan
1: community.
2: Shri Janardhan Bapurao Bothe, Samaj Seva.
0: Mashhoor samajik karyakarta hain Bothe ji, 77 saal ke hain. और पूज्य राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज द्वारा स्थापित पवित्र गुरुकुंज आश्रम में आप सेवा दे रहे हैं।
1: श्री बोथे कंपनीड राष्ट्र संत श्री टुकड़ो जी महाराज ऑन सिग्निफिकेंट विजिट्स अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग गोवा, राष्ट्रपति भवन, मेजर कुंभ मेलास, साधु सम्मेलन एंड द फाउंडिंग मीटिंग ऑफ संस्था ऑफ द विश्व हिंदू परिषद इन मुंबई। He has also served as full-time personal secretary
2: Swami Brahmadev Samaj Seva.
0: Swami Brahmadev 82 साल के हैं आप, श्रद्धे हैं, राजस्थान के श्री गंगानगर से आते हैं और आपने राष्ट्र के कई अंचलों में आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी दिया है और समाज की सेवा भी की है।
1: And during spiritual practice while completing bachelor degree at college in Amritsar, which was adjacent to a blind school, being compassionate with blind children, he decided to dedicate his life for upliftment of specially abled children. Swami Brahmadev.
0: केसरिया रंग का आपने साफा पहना है और केसरिया ही परिधान है। राष्ट्रपति जी के सामने उन्हें अभिवादन करते हुए ये संत पद्मश्री से सम्मानित होता हुआ।
2: श्री प्रोसेनजीत चैटर्जी कला फिल्म अभिनय।
0: प्रोसेनजीत चैटर्जी इन्हें बुम्बा दा नाम से ज्यादा जानते हैं और भारतीय सिनेमा की एक अनूठी पहचान इन्होंने बनाई है और खास तौर पर बंगाली सिनेमा में आपने बहुत काम किया है और दूसरे के लिए आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला है।
1: इन द डिजिटल एरा श्री चैटर्जी सक्सेसफुली रीइन्वेंटेड हिमसेल्फ

0: हिंदी स्ट्रीमिंग प्रोजेक्ट्स लाइक जुबली स्कूप एंड खाकी
1: श्रीमती देवकी अम्मा जी समाज सेवा
2: वन उत्पादक है आप 82 साल की हैं लेकिन रुकी नहीं है वन दादी नाम से जानी जाती है 3,000 से ज्यादा पेड़ों और स्वदेशी औषधियों और दुर्लभ पौधों की प्रजातियों को बचाने का काम आपने किया है और केरल के अल्लपुआ से आती हैं
0: श्रीमती देवकी अम्मा relied on traditional knowledge and close observation of soil and climate conditions for growing plant saplings and used mulching organic manuring from home cattle careful retention of leaf litter and thoughtful water management She was also conferred the Nari Shakti Puraskar in 2018.
1: डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले एवं श्रीमती सुनीता गोडबोले चिकित्सा
2: डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और उनके साथ सुनीता गोडबोले आप एक
1: डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले
2: 66 साल के हैं और आदिवासी समुदायों के लिए खास तौर पर छत्तीसगढ़ में आपने बहुत काम किया है
0: In 1990, soon after their marriage, Dr. Godbole and his wife, Srimati Sunita Godbole, decided to move to Bastar to serve tribal communities medically.
1: Srimati Sunita Godbole.
2: ये भी कितना गौरव का क्षण है उनके साथ आ रही हैं सुनीता गोडबोले एक साथ दोनों को पद्मश्री मिलता हुआ आपने भी समाज के लिए बहुत कार्य किया है और खास तौर पर अपने पति डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले के साथ महाराष्ट्र में 12 साल और छत्तीसगढ़ में 30 सालों से आपने सेवा की है
0: right.
1: श्री तेची गुबिन समाज सेवा
2: अरुणाचल प्रदेश से आते हैं और वास्तुकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं आपने बहुत ही कार्य किए वहाँ पर और पारंपरिक अरुणाचली परिधान पहनकर जिसमें सिर पर पंख भी है हॉर्नबिल का नमस्कार करते हुए तेची गुबिन 62 वर्षीय पद्मश्री प्राप्त करते हुए
0: श्री गोबिन ऑर्गेनाइज्ड एंड लेड द सीमांत दर्शन यात्रा इन 2010 एंड 2021 विजिटिंग रिमोट विलेजेस बॉर्डरिंग चाइना म्यांमार एंड भूटान He also led a team of delegations to meet the Vice President to report on the security needs.
1: Dr. H. V. Hande, Chikitsa.
2: 99 साल के हैं आप और ध्यान रखिए 99 वर्षों से इस शख्स ने भारत की सेवा की है मशहूर चिकित्सक हैं और साथ में राजनीतिज्ञ भी हैं लेकिन इन सब के अलावा डॉक्टर हंडे ने संपूर्ण कंब रामायण जो कि तमिल में है मूल रूप से उसका अंग्रेजी गद्य में अनुवाद भी किया है राष्ट्रपति जी के एडीसी उनका हाथ पकड़ कर ले जाते हुए उन्होंने हल्के हरे रंग का जैकेट पहना है और राष्ट्रपति जी का अभिवादन करते हुए आगे अपना पद्मश्री प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे जाते हुए
0: While Dr. Hande was the health minister of Tamil Nadu between 1980 and 1986, he brought the state into the first slot consecutively for 3 years in reducing infant mortality rate and maternal mortality rate, in drastically reducing the incidence of leprosy and other communicable diseases. Thereafter, he received the prestigious Dr. B.C. Roy
1: Award. Shri Gafruddin Mevati Jogi Kala Bhapang Vadan.
2: राजस्थान में अलवर से गफरुद्दीन जी आते हैं इन्होंने राजस्थानी साफा पहना है नमस्कार करते हुए जाते हुए जोगी परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं और भपंग बजाते हैं जिसे महादेव का वाद्य कहते हैं और खास तौर पर महाभारत और कृष्ण लीला अली बख्शी परंपरा जैसी कथाओं का वाचन करते हैं
0: वेल थ्रू हिज सस्टेन्ड आर्टिस्टिक प्रैक्टिस श्री गफरुद्दीन हैज कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द प्रिजर्वेशन ऑफ नियरली 20 एंडेंजर्ड फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड ओरल नैरेटिव ट्रेडिशंस हिज वर्क हैज सपोर्टेड एकेडमिक रिसर्च इंक्लूडिंग पीएचडी लेवल स्टडीज
1: हाजी कासम कला ढोलक
2: 75 साल के मीर हाजी कासम इन्हें हाजी रामकडू नाम से बुलाते हैं आप जूनागढ़ के एक महान और मशहूर लोक संगीतकार हैं 75 वर्ष के हो चुके हैं लेकिन इन्होंने पूरा जीवन गुजरात के पारंपरिक संगीत को समर्पित किया है और खास तौर पर बहुत अच्छी ढोलक बजाते हैं
0: श्री कासम हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन कैरिंग गुजराती फोक म्यूजिक टू ग्लोबल ऑडियंसेस परफॉर्मिंग अक्रॉस कंट्रीज सच एज द यूएसए यूके साउथ अफ्रीका कनाडा यूएई ओमान एंड सेवरल अदर्स ही हैज आल्सो रिसीव्ड many state-level honors, including the Gujarat Gaurav Puraskar, Gujarat Rajya Sangeet Natak Academy Award, Gujarat Lokala Rashtriya
1: Puraskar. Shri Raghuveer Khedkar, Kala Theatre.
2: रघुवीर खेड़कर को महाराष्ट्र के लोग अच्छी तरह जानते हैं. आप एक मशहूर तमाशा कलाकार हैं और तमाशा की एक मंडली भी चलाते हैं और लोक कला और खास तौर पर मराठी लोक कला को संरक्षित करने के लिए कटिबद्ध हैं.
0: During the COVID-19 pandemic, when public performances halted and many artists faced hunger and unemployment, Shri Khedkar stood up as a staunch advocate. He led appeals for financial support and leveraged solace and solidarity for folk artists.
1: Shri R. Krishnan Kitna Marnoprant, Kala Kurumba Tribal Painting, Unki Patni Srimati Sushila Krishnan.
2: आर कृष्ण किटना जिनका 20 मार्च 2025 को निधन हो गया था. आप तमिलनाडु से आते हैं और बचपन से ही चित्रकारी करते आए थे और दीवारों पर इन्होंने बहुत चित्र बनाए. सुशीला कृष्णन उनकी पत्नी पद्मश्री प्राप्त करती हुई.
0: श्री आर कृष्णन किटना इज नोन फॉर यूजिंग नेचुरल पिगमेंट्स इन हिज आर्ट फॉर्म एंड हिज स्किल्स एज अ स्टोरी टेलर. ही इज आल्सो
1: प्रोफेसर डॉक्टर लार्स क्रिश्चियन कोच कला म्यूजिकोलॉजी.
2: एथ्नोम्यूजिकोलॉजिस्ट हैं आप. बंगाल से प्रेम करते हैं और खास तौर पर गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ इनका एक आत्मिक संबंध है. बॉन में टैगोर इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाई की और शांति निकेतन पश्चिम बंगाल से भी जुड़े रहे.
0: प्रोफेसर कोच इज डायरेक्टर ऑफ द स्टेट एथनोग्राफिक कलेक्शंस इन द स्टेट आर्ट कलेक्शंस सैक्सोनिया इन ड्रेसडन जर्मनी सिंस अक्टूबर 2025.
1: प्रोफेसर मामीडाला जगदीश कुमार साहित्य एवं शिक्षा.
2: 66 वर्षीय जगदीश कुमार अपने एनसीईआरटी में बहुत काम किया है. सुप्रसिद्ध शिक्षाविद है और राष्ट्र की जो शिक्षा नीति है उसमें भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है.
0: Well, Professor Mamidala Jagadish Kumar framed and operationalized models under NEP 2020 and the four-year undergraduate program with flexible structure and the academic bank of credits.
1: Shri well. Praveen Kumar, Khel Athletics Divyang.
2: Rabbari is 23 varshiya khiladi ki T44 unchi kood mein vishwa mein aap number 1 hain. और पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पैरा एथलीट हैं प्रवीण कुमार.
0: श्री प्रवीण कुमार वेंट ऑन टू क्लेम गोल्ड एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री विद अ लीप ऑफ 2.05 मीटर्स सेटिंग एन एशियन रिकॉर्ड. एट टोक्यो पैरालंपिक्स ही वन अ सिल्वर मेडल.
1: श्री के विजय कुमार सिविल सेवा.
2: विजय कुमार जी CRPF के पूर्व महानिदेशक रहे हैं और संकटपूर्ण मिशनों में आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
0: As Commissioner of Chennai, Shri K. Vijay Kumar reformed crime control practices, cracked down on organized gangs and enhanced public safety and reduced road fatalities by 40%. As additional DG Law and Order, he strengthened public safety
1: strategies. Shri Devba Lad, Dada Lad, Krishi.
2: देवालाड किसानी खेती करते हैं और ग्रामीण विकास और स्थायी कृषि और सामाजिक कार्यों में बहुत योगदान दिया है. परभणी जिले के मालसोना गांव में आप जन्म हैं. 79 वर्ष के हैं.
0: श्री रंग देवालाड इन्वेंटेड न्यू टेक्नोलॉजी इन कॉटन कल्टीवेशन व्हिच वाज यूज्ड बाय फार्मर्स इन ऑल कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया. ही हैड डन रिसर्च वर्क इन जवार एंड तूर एज़ वेल.
1: श्री अंके गौड़ा एम समाज सेवा.
2: 77 साल के अंके गौड़ा अब माननीय राष्ट्रपति जी से अपना पद्मश्री प्राप्त करने के लिए जाते हुए आपने अपना पूरा जीवन पुस्तकों के संरक्षण संग्रह और उसे लोगों तक पहुंचाने में दे दिया है.
0: श्री अंके गौड़ा जी हैज पर्सनली कलेक्टेड मोर देन 20 लाख बुक्स ओवर द लास्ट 50 ईयर्स यूजिंग हिज इंटायर पर्सनल अर्निंग्स फॉर दिस पर्पज एंड हिज कलेक्शन इंक्लूड्स बुक्स इन कन्नड़ा इंग्लिश हिंदी तमिल तेलुगु एंड सेवरल अदर इंडियन लैंग्वेजेस एंड diverse subjects such as literature, history, art, culture and philosophy.
1: Professor Dr. Saroj Mandal, Chikitsa Cardiology.
2: 59 वर्षीय डॉक्टर मंडल इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आपने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश की

0: खूब सेवा की है।
1: प्रोफेसर डॉक्टर मंडल हैज सर्वड ओवर 6 लाख पेशेंट्स इन ओपीडी ओवर 35 इयर्स एंड इंडिपेंडेंटली परफॉर्म्ड एंड सुपरवाइज्ड 50,000 कोरोनरी एंजियोग्राम्स एंड 50,000 एंजियोप्लास्टीज।
2: प्रोफेसर बुद्ध रश्मि मणि, पुरातत्व विज्ञान,
0: भारतीय पुरातत्व विज्ञान के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर प्रोफेसर बुद्ध रश्मि मणि, राष्ट्रीय संग्रहालय के महानिदेशक भी आप रहे हैं, और कहां कहां उत्खनन इन्होंने नहीं किया हमारी सभ्यता के अवशेष खोजने में।
1: While working in the Archaeological Survey of India, Professor Mani conserved about 150 centrally protected monuments in Maharashtra, Goa, Delhi and Jammu and Kashmir and discovered 200 archaeological sites and he directed 20 expeditions.
2: Shri Nilesh Vinod Chandra Mandlewala, Samaj Seva.
0: ऑर्गन मैन के रूप में जाने जाते हैं और डोनेट लाइफ संस्थान के रूप में इन्होंने बहुत कार्य किया है, खास तौर पर गुजरात और भारत में शव अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाई है।
1: श्री मंडलेवाला, he has a long term vision that by 2047 no citizen should lose life because of the non availability of organs. For that he has traveled extensively across India.
2: डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र, साहित्य एवं शिक्षा।
0: लुप्त प्राय जनजातीय आवाज़ों को आधुनिक शिक्षा शास्त्र में आपने शामिल किया है और आवाज़ों को संरक्षण करने में 4 दशक से अधिक का समय दिया है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र ने।
1: Internationally, Dr. Mishra has advised Nepal's MLE policy, lectured at China's CAS, Hanyang University, South Korea, Thailand's Mahidol University, and Russia's Academy of Sciences.
2: Shrimati Tripti Mukherjee, Kala, Kantha Embroidery.
0: Kantha, ऐसी कढ़ाई है जो पूरे विश्व में भारत की पहचान है और उसे आगे बढ़ाने में, उसे नए स्वरूप देने में तृप्ति मुखर्जी का बहुत योगदान रहा है।
1: श्रीमती मुखर्जी इज द रेसिपिएंट ऑफ न्यूमरस अवार्ड्स सच एज द नेशनल अवार्ड सर्टिफिकेट इन 2010 एंड शिल्प गुरु अवार्ड इन 2016 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। शी इज आल्सो बीन एक्नॉलेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल बाय कन्फरिंग ऑन हर द बंगश्री अवार्ड।
2: हरि माधव मुखोपाध्याय, कला थिएटर, उनके पुत्र श्री कृष्णेंदु मुखोपाध्याय।
0: आप मशहूर थिएटर निर्देशक, नाटककार और अभिनेता थे। 85 वर्ष की उम्र में 17 मार्च 2025 को आपका निधन हो गया। उनकी बिहाफ पर पद्मश्री प्राप्त करने जाती हुई कृष्णेंदु उपाध्याय मुखोपाध्याय।
1: श्री
2: सत्य नारायण नंदलाल नवाल, व्यापार एवं उद्योग।
0: 74 वर्षीय नुवाल सोलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। आज इन्हें सम्मानित किया जा रहा है पद्मश्री से।
1: Under Shri Nawal's leadership, Solar became the first Indian company to design, develop and manufacture fully weaponized variants of the Nagastra loiter munition, which has
2: Shri K. Pajanivel, Khel, Silambam.
0: Silambam. 5000 साल पुरानी भारतीय मार्शल आर्ट है और युद्ध शस्त्र आधारित पद्धति है, इसे आगे बढ़ा रहे हैं के पजानीवेल।
1: Well, Shri Pajanivel was conferred the Academy Puraskar Award of Sangeet Natak Academy presented by the Honorable President of India in 2023. And he also found the Mamallan Silambam and Folk Arts Development Club in Pondicherry. He has also trained youths who were interested in Silambam.
2: Shri Dharmik Lal Chunilal Pandya, Kala Man Akhyan.
0: 94 वर्ष के हैं आप, धार्मिक लाल चुनीलाल पंड्या, और गुजरात की प्राचीन मान भट्ट मान आख्यान परंपरा के सर्वश्रेष्ठ उस्ताद हैं। आपने पगड़ी पहनी है और व्हील चेयर पर जाते हुए राष्ट्रपति जी खुद अपने आसपास आकर श्री पंड्या का सम्मान।
1: In addition to preserving classical repertoire, Shri Pandya has composed new akhyans on contemporary social themes like water conservation.
2: Shri Kailash Chandra Pant, Sahitya Evam Shiksha.
0: प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक हैं कैलाश चंद्र पंत, मध्य प्रदेश से आते हैं और शुरू से ही पत्रकारिता और खास तौर पर निष्पक्ष पत्रकारिता में आपने अपना अनूठा नाम बनाया है।
1: In 1977, Shri Kailash Chandra Pant launched weekly

0: Jan Dharam from November 1980s as Secretary of Madhya Pradesh Rashtra Bhasha Prachar Samiti. He revitalized Hindi Bhavan and upgraded the quarterly literary magazine Akshara.
1: राष्ट्रपति जी स्वयं एक सीढ़ी उतर कर नीचे आती हुई और पंत जी जो कि 90 साल के हैं उनका सम्मान करती हुई और ये करतल ध्वनि इस बात का प्रतीक कि राष्ट्र ऐसे सेवकों का ऋणी है.
0: His work earned him the विश्व हिंदी सम्मान.
2: श्री गरी मेला बाल कृष्ण प्रसाद मरणोपरांत कला गायन उनके पुत्र श्री गरी मेला अनिला कुमार.
1: अनिला कुमार उनके ब्याह पर लेगी ये पुरस्कार. गली मेला बालकृष्ण प्रसाद 78 वर्ष की उम्र में ये देह तो छोड़ गए लेकिन अपने महत्वपूर्ण कार्यों को राष्ट्र के लिए सौंप गए. प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय और भक्ति संगीत गायक थे आप.
0: Over a career spanning six decades, Shri Prasad presented more than 6,000 concerts across India and internationally.
2: Professor Dr. Rajendra Prasad, Chikitsa, Tuberculosis.
1: 76 वर्षीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक सुप्रसिद्ध चेस्ट फिजिशियन है और क्षय रोग और खासतौर पर क्षय रोगियों की देखभाल और उनकी चिकित्सा में आपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है.
0: प्रोफेसर डॉक्टर प्रसाद वाज द फर्स्ट इन इंडिया टू एस्टैब्लिश द एसोसिएशन ऑफ बीडी स्मोकिंग एंड द यूज ऑफ बायोमास फ्यूल स्मोक विद क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज ट्यूबरकुलोसिस एंड लंग कैंसर. He has worked on 35 research projects and supervised 185 MD, MS and DM.
2: Dr.
0: students.
2: Gunduru Venkat Rao, Chikitsa Gastroenterology.
1: अब एक और चिकित्सक का सम्मान होता हुआ 66 वर्षीय वेंकट राव एक प्रमुख सर्जरी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं और आपने अपनी सर्जरी के जरिए कई लोगों की जान बचाई है.
0: Well, he has performed more than 12,000 complex gastrointestinal surgeries and nearly 16,000 advanced endoscopic procedures. He has also held several important leadership positions.
2: Reddy, Kala Nritya.
1: 60 वर्षीय दीपिका रेड्डी एक मशहूर कलाकार है, कोरियोग्राफर भी हैं और समर्पित गुरु और एक सांस्कृतिक राजदूत भी है. शास्त्रीय नर्तकों की तीन पीढ़ियों से आप ताल्लुक रखती हैं.
0: श्रीमती रेड्डी वाज द फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन ऑफ तेलंगाना संगीत नाटक अकादमी, गवर्निंग काउंसिल मेंबर संगीत नाटक अकादमी दिल्ली एंड हैज रिसीव्ड प्रेस्टिजियस अवार्ड्स लाइक संगीत नाटक अकादमी अवार्ड एंड मेनी मोर.
2: डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी, चिकित्सा ऑन्कोलॉजी.
1: अगले चिकित्सक पद्मश्री प्राप्त करने जा रहे हैं डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी. 67 साल के हैं और आप मशहूर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं. इनकी यात्रा क्लिनिकल उत्कृष्टता से कहीं आगे जानी जाती है और हैदराबाद में आपने बहुत कार्य किया है.
0: Well, Dr. Reddy has delivered over 921 CME lectures, authored 112 plus publications and organized numerous international conferences to bring cutting edge technology to Indian practitioners. His advocacy efforts
2: श्री हरिचरण शाइकिया, कला सत्रिया नित्य.
1: सत्रिया असम की एक सुप्रसिद्ध कला और हरिचरण शाइकिया जी जो कि 94 वर्ष के हैं व्हीलचेयर पर जाते हुए आपने इस कला का न सिर्फ संरक्षण किया है बल्कि इसे लोगों तक भी पहुंचाया है और बहुत सारे लोगों को सत्रिय कला का प्रशिक्षण भी दिया है. माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी उनको नमस्कार करते हुए आगे जाते हुए और राष्ट्रपति जी आकर उन्हें पद्मश्री प्रदान करती हुई.
0: श्री हरिचरण साइकिया परफॉर्म्ड सत्रिया डांस बिफोर इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन. ऑल्सो ही परफॉर्म्ड द बलगीत विद मणिराम गायन मोक्तर एट ऑल इंडिया रेडियो इन 1948.
2: प्रोफेसर वेम्पटि कुटुंब शास्त्री,
1: 86 साल के शास्त्री जी,
2: साहित्य एवं शिक्षा
1: विद्वानों में से हैं. आपने अद्वैत वेदांत दर्शन और संस्कृत काव्य शास्त्र में बहुत सारे कार्य किए हैं. नमस्कार करते हुए, अभिवादन करते हुए अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का और अब मुड़कर अभिवादन करते हुए राष्ट्रपति जी का पद्मश्री प्राप्त करने जाते हुए.
0: प्रोफेसर वेम्पटि कुटुंब शास्त्री has authored and edited 15 books and more than 50 research papers. He has also guided numerous doctoral scholars and delivered hundreds of lectures.
2: Professor Shafi Shauk, Sahit.

0: एवं शिक्षा।
1: 100 से ज्यादा किताबें आपने लिखी हैं और कश्मीर से आते हैं और कश्मीरी अंग्रेजी हिंदी और उर्दू सब भाषाओं में आपने खूब लिखा है प्रोफेसर शफी शौक।
2: His translations include his series of books under the title The Best of Kashmiri Literature. He has also written scripts for numerous TV serials and films.
0: Shri Baldev Singh Khel, hockey coach.
1: Baldev Singh ji ne बहुत सारे हॉकी खिलाड़ी इस राष्ट्र को दिए हैं। एक अनुभवी कोच है और आज इन्हें मिलता हुआ पद्मश्री और ये तालियां इस बात का प्रमाण कि उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है।
2: श्री बलदेव सिंह जी इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड फॉर डेवलपिंग द शहबाग मारकंडा हॉकी नर्सरी इनटू वन ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रोडक्टिव सेंटर्स फॉर हॉकी
0: टैलेंट। श्री यमनाम यात्रा सिंह मरणोपरांत कला नट संकीर्तन, उनके पुत्र श्री यमनाम बिशन भोर सिंह।
1: आप मणिपुर के पारंपरिक वैष्णव नृत्य और संगीत के प्रतिष्ठित प्रतिपादक थे और बीते वर्ष 11 अक्टूबर को हमारे बीच नहीं रहे, सम्मानित होते हुए यमनाम यात्रा सिंह मरणोपरांत।
2: His contributions to Nata Sankirtan are timeless. His efforts played a significant role in UNESCO's recognition of Sankirtan as an intangible cultural heritage in 2013.
0: Dr. Ashok Kumar Singh, Vigyan Evam Engineering.
1: Ashok ji ne भारत में बासमती चावल की खेती का कायाकल्प करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है और इस contribution के लिए आज राष्ट्र उन्हें सम्मान दे रहा है पद्मश्री का।
2: डॉक्टर सिंह हैज गाइडेड 34 पीएचडी एंड 5 एमएससी स्टूडेंट्स मेकिंग सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशंस टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मेंटरिंग न्यूमरस यंग प्रोफेशनल्स।
0: श्रीमती शिव शंकरी, साहित्य एवं शिक्षा।
1: अबारी श्रीमती शिव शंकरी जी की। आप 1942 में जन्मी हैं और चेन्नई में इन्होंने बहुत कार्य किया और ख़ास तौर पर लेखन में सभी भाषाओं में और ख़ास तौर पर तमिल में बहुत सारा इन्होंने लिखा है। 30 से ज़्यादा उपन्यास, 40 से ज़्यादा लघु उपन्यास, 100 से ज़्यादा लघु कथाएं, 16 यात्रा वृत्तांत बहुत लिखा है इन्होंने।
2: Shrimati Shiv Shankari completed her Bachelor of Science degree as a university rank holder, reflecting her early academic excellence. She was also selected as the Woman of the Year 2000 by the International Women's Association. She was also one of the four writers who were recorded in her own voice for the archives of the U.S. Library of Congress.
0: Dr. R. Sridhar, Community Radio.
1: श्रीधर जी आकाशवाणी के उप महानिदेशक रहे और विज्ञान का एक लंबा सीरियल इन्होंने बनाया जो किसी भी देश में बना हुआ सबसे ज्यादा बड़ा सीरियल था, विज्ञान सीरियल।
2: डॉक्टर श्रीधर इज इन एसोसिएशन विद द नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप द लॉन्गेस्ट रेडियो साइंस सीरियल फॉर चिल्ड्रन टाइटल्ड द ह्यूमन एवोल्यूशन मानव का विकास, ब्रॉडकास्ट इन 18 इंडियन लैंग्वेजेस साइमल्टेनियसली थ्रू 200 रेडियो स्टेशंस। He has also played a central role in launching Gyan Darshan Group of Channels, the first 24-hour educational television channel.
0: Professor Shyam Sundar, Chikitsa Kalazar.
1: आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के Institute of Medical Sciences में medicine के मानद प्रोफेसर हैं। संक्रामक रोगों खासतौर पर विसरल लिशमैनियासिस कालाजार में आपने बहुत कार्य किया है।
2: प्रोफेसर सुंदर इज रैंक्ड एट द टॉप इन द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ लिशमैनियासिस एंड कालाजार फ्रॉम द ईयर 2013 टू डेट। ही हैज पब्लिश्ड एक्सटेंसिवली इन एकेडमिक जर्नल्स इंक्लूडिंग NEJM
0: एंड डॉक्टर एस जी सुशील अम्मा, समाज सेवा।
1: 24 मई 1939 को आप कर्नाटक में जन्मी हैं और प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता और खास तौर पर अपने सेवा आश्रम के जरिए बहुत समाज सेवा का आपने कार्य किया है। 5 दशक कोई कम समय नहीं होता लालिमा जी, 5 दशक से ज्यादा इन्होंने समाज सेवा की है और अब हाथ पकड़कर आगे जाती हुई और सफेद साड़ी इन्होंने पहनी और झुककर अभिवादन करती हुई माननीय गृह मंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का और अब माननीय राष्ट्रपति जी का।

0: by the Flapiwi.
1: Dr. Sushil Amma has also implemented extensive rural development and women empowerment programs across Karnataka, including adult literacy campaigns, formation of self-help groups and Mahila Mandals, and vocational and entrepreneurship training, microcredit initiatives and panchayat leadership development. She has also worked closely with tribal communities through sustainable agriculture and livelihood projects.
2: Shri N. Swaminathan, Kala Bhakti Sangeet.
0: Tanjavur se aate hain aur Tamil Sangeet ke kshetra ke pratishthit kalakar hain aur aapne Tamil bhasha mein Bhagwan Shiv ke bhajanon ka paramparik ek pramanik bhajan sangrah bhi nikala hai.
1: He became a master of the art and served as Othuvar in many temples of Tamil Nadu and later worked at Thiruthani Lord Murugan Temple for nearly 26 years. He has served as a teacher in VS Trust, a charitable trust to Lord Nataraja Temple in Chidambaram.
2: Dr. Keval Krishna Thakral, Chikitsa Ayurveda.
0: Dr. Thakral, Ayurvedic Padhati ke Shali Chikitsak hain aur Bharat mein Kshar Sutra Chikitsa ke Madhyam se कई रोगों के उपचार और खासकर ब्रोंकियल अस्थमा के उपचार के लिए इन्होंने एक लघु शल्य प्रक्रिया कर्म वेदन भी आगे बढ़ाई है.
1: डॉक्टर केवल कृष्ण ठकराल मूव टू सैन फ्रांसिस्को यूएसए इन 1976 एज अ रिसर्च सर्जन. ही हैज बीन इनवाइटेड टू ओवर 80 सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस टू शेयर हिज नॉलेज एंड हिज प्रोफाइल हैज बीन पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस आल्सो.
2: डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी मरणोपरांत विज्ञान एवं इंजीनियरिंग उनके पुत्र श्री रमन कुमार त्रिवेदी.
0: ज्यादा दिन नहीं हुए, 12 मई को ही आपका निधन हो गया था. डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी एक कृषि वैज्ञानिक थे और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रह चुके हैं. पुरस्कार प्राप्त करते हुए इनके पुत्र रमन कुमार त्रिवेदी.
1: डॉक्टर त्रिवेदी सिंस द लास्ट 5 years ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल इनिशिएटेड अ प्रोग्राम टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ मेज.
2: श्री अरविंद वैद्य कला थिएटर.
0: वरिष्ठ कलाकार हैं और 6 दशकों से ज्यादा समय से आपने गुजराती रंगमंच, हिंदी टेलीविजन और फिल्मों के क्षेत्र में काम किया है.
1: श्री वैद्य
0: काले रंग का जोधपुरी सूट पहना हुआ है.
1: श्री वैद्य फाउंडेड द नाट्य संपदा, हिज ओन प्रोडक्शन कंपनी थ्रू विच ही प्रोड्यूस्ड, डायरेक्टेड एंड एक्टेड इन मोर देन 75 फुल लेंथ प्लेज. ईच वर्क कैरीड द क्वाइट वेट ऑफ डेडिकेशन, गैदरिंग रिकॉग्निशन अलोंग द वे. In 1993, Mumbai beckoned him and opened a wider horizon. He's multilingual and
2: Professor
1: very adaptable.
2: Professor Juzar Vasi, Vigyan Evam Engineering.
0: Professor Juzar Vasi, IIT Bombay mein Professor Emeritus hai. Aur aapne micro electronics aur semiconductor aur solar photovoltaic se kshetron mein bahut karya kiya hai.
1: Professor Vasi, throughout his career in both semiconductors and solar photovoltaics, he stressed the importance of interdisciplinary, collaborative and inclusive research, which he thought was necessary, especially on major national missions. He has published about 200 papers in leading journals.
2: Dr. Narayan Vyas, Puratattva Vigyan.
0: Dr. Narayan Vyas, विश्व के सुप्रसिद्ध पुरातत्वविदों में से एक है. खास तौर पर मध्य प्रदेश में भीमबेटका और सांची और गुजरात के रानी जीरी वाव सीढ़ी कुआं के योगदान में आपने बहुत ही योगदान दिया है.
1: Dr. Vyas was associated with the National Archives of Indian Historical Record Committee, domain expert member in National Screening and Evaluation Committee. He was awarded the prestigious Dr. Vishnu Sridhar Vakankar Award from the government of Madhya Pradesh in
2: 2019. Professor Gambir Singh Yonzan, Sahitya Evam Shiksha.
0: Gambir Singh Ji, Darjeeling पहाड़ियों के एक प्रतिष्ठित वनस्पति शास्त्रीय शिक्षाविद, पर्यावरणविद और संस्थान के निर्माता हैं और खास तौर पर वनस्पति विज्ञान में आपने बहुत कार्य किया है.
1: प्रोफेसर योनजोन्स कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशनल एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट ऑफ दार्जिलिंग हिल रीजन आर पायनियरिंग एंड फार रीचिंग. A passionate advocate of scientific temper and environmental awareness, he led a 6-year conservation movement that was a huge success.

0: श्री हैली वार समाज सेवा
1: बारी हैली वार जी की आप पर्यावरणविद और खासी लोगों के स्वदेशी ज्ञान के लिए एक प्रतिष्ठित नाम है।
2: श्री वार has spent more than 50 years nurturing and building the iconic living route bridges of the East Khasi Hills. Since the age of 10, he has meticulously guided the aerial roots of the Ficus elastica tree to create durable living structures. His most celebrated work, the Omkar Living Route Bridge, stands as a testament to his patience and profound understanding of natural ecosystems.
1: और अब सचिव महोदय आते हुए, क्योंकि ये अंतिम सम्मान था आज का, और राष्ट्रपति
0: माननीय राष्ट्रपति महोदय आपकी आज्ञा हो तो समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। धन्यवाद महोदय।

0: see everybody's standing.
1: राष्ट्रपति जी इस वक्त धीरे धीरे दरबार इस गणतंत्र मंडप से प्रस्थान करती हुई सबका अभिवादन करती हुई उनके ठीक पीछे उपराष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी अभिवादन करते हुए ठीक पीछे अमित शाह जी और मनसुख मांडविया जी ये तमाम और अब आ रहे हैं ओम बिरला जी पीछे श्री वेंकैया नायडू जी तमाम गणमान्य अतिथि धीरे धीरे सबका अभिवादन करते हुए गणतंत्र मंडप से बाहर जाते हुए
0: There is a palpable excitement in the hall, which was jam-packed with the awardees and their relatives who had come to receive the prestigious Padma Awards. It is indeed a moment of pride.
2: So please, may I have attention, please? I request all the award winners to move towards your right side. Second part of the ceremony.
1: Akashwani se uska aankhon dekha haal bhi sunna na bhule. तकनीकी टीम के सदस्य थे अशोक कुमार मिश्र कमल सिंह और हेमराज मीणा ओबी इंचार्ज हमारे साथ तुषार पराशर और इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर प्रमोद कुमार मैं महेंद्र सिंह लालस अपनी साथी कमेंटेटर लालिमा अनेजा डैंग के साथ अब आपको लिए चलता हूं आकाशवाणी के स्टूडियो वापस नमस्कार
3: ताबीरे दिल्ली दगी रिलेदा इकाई खुमदा जरीबा भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मूना राष्ट्रपति भवन दा पद्मा अवार्ड गेंथोक पगी थौरम गी मिदना उबा पाउतम

तुमान तुमान बात थरम कया संदोक तुने तहन जरी बसे आकाशवाणी इम्फाल की संगाई चैनल दगिने हौजी खुदोल तमजरी खुजी फिल्म दगे सदानंद मदी रोशिबिना अनिगे अपुनब खोंजेलदा रोमी मैतै न सैरेंगबा तोंब थांगजम न सैरांगबा फिल्म इसै

0: ꯁꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯃꯁ꯭ꯌꯥ ꯑꯃ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕ ꯍꯧꯔꯦ
1: ꯍꯣꯏ
0: ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯟꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯧ ꯊꯥꯔꯝꯃꯒꯁꯨ ꯐꯧꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯔꯝꯃꯤꯕ ꯐꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕꯤ ꯐꯧꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯊꯣꯛꯇꯕ ꯃꯍꯥꯎꯗꯤ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯆꯪꯕ ꯊꯥ ꯃꯉꯥ ꯇꯔꯨꯛꯀ ꯆꯪꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯊꯥꯅꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯍꯣꯡꯉꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯀꯣꯛ ꯌꯥꯝꯈꯠꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯝꯒꯤ ꯖꯒꯥꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯐꯝꯅ ꯄꯤꯛꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯡ ꯇꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯋꯥꯠꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯀꯪꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯦꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧ ꯁꯨꯕꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯤꯗ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯑꯦꯗꯚꯔꯇꯥꯏꯁ ꯇꯧꯗꯅ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯤꯗ ꯊꯥꯕꯤꯌꯨ ꯑꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯥꯏ ꯁꯤ ꯑꯥꯔ ꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤ ꯌꯨ ꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯍꯣꯔꯇꯤꯀꯜꯆꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯀꯔꯤꯝꯇꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯁꯨ ꯇꯥꯟꯖꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯕꯥꯔ ꯇꯧꯕꯁꯤꯡꯁꯨ ꯀꯥꯟꯅꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯆꯦꯟꯖꯁꯤꯒꯁꯨ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯟꯅꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯥꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ
1: ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯎꯁꯤꯡꯎꯕ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯏꯪ ꯑꯁꯥꯁꯤꯗ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯔꯣꯜ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯔꯃꯔ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯔꯣꯜꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯁꯤꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ?
0: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯆꯦꯟꯖ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯂꯧꯃꯤ ꯏꯆꯤꯜꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯣꯝꯗꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯆꯧ-ꯑꯆꯧꯕ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯥꯏ ꯁꯤ ꯑꯥꯔ ꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯕ ꯆꯪꯉꯤ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯕ ꯆꯪꯉꯤꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯣꯠ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯆꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯧꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯂꯧꯎ ꯄꯊꯥꯞꯇꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯤꯡꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯧꯃꯤ ꯏꯆꯤꯜꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯏꯕ ꯃꯣꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯃꯛ ꯏꯟꯕꯤꯕ ꯃꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯌꯧꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯊꯛꯇꯒꯤ ꯌꯦꯡꯊꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁꯄꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯕꯨꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯂꯧꯃꯤꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯒꯤ ꯏꯍꯨꯟ ꯈꯪꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯃꯤ ꯏꯆꯤꯜꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯟꯊꯪꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯔꯨ ꯃꯔꯥꯡꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯗꯨꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜꯁꯤꯡꯗꯨ ꯂꯧꯃꯤ ꯏꯆꯤꯜꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯂꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯂꯧꯃꯤ ꯏꯆꯤꯜꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯃꯗꯨ ꯂꯧꯕꯃꯛ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯧꯃꯤꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯒꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯇꯝ ꯑꯞ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯁꯁꯤꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦꯅ ꯈꯟꯖꯩ
1: ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯟꯕꯤꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯕꯁꯤꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕꯁꯤꯒ ꯃꯊꯛꯀꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯦꯗꯤꯌꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯗꯚꯔꯇꯤꯁꯃꯦꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯏꯝꯐꯥꯜꯅꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯇꯦꯂꯤꯚꯤꯖꯟꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯧꯔꯦꯗ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯐꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯗꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯈꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯖꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯂꯧꯃꯤꯅ ꯑꯃ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯃꯒ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯊꯝꯃꯛꯄ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯏꯪ ꯑꯁꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯆꯦꯟꯖꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯩꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯐꯝꯒꯗꯤ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯪꯖꯩ
0: ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯕ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯂꯧꯎꯁꯤꯡꯎꯕꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯐꯣꯔꯝꯁꯤꯗ ꯈꯟꯅꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯁꯃꯁ꯭ꯌꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯆꯦꯟꯖ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯐꯤꯕꯝ ꯈꯜ ꯀꯥꯏꯊꯔꯛꯄ ꯍꯣꯡꯉꯛꯄ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯁꯨ ꯆꯠꯇꯣꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗ ꯆꯠꯇꯣꯔꯤꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯁꯤꯗ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯃꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯁꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁꯀꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯂꯧꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯒꯨꯟꯗꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯔꯦ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕꯒꯤ ꯍꯦꯕꯤꯠ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯂꯧꯕꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯔ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯧꯕꯤꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧ ꯎꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥ ꯑꯃꯒ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯇꯔꯥ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯥꯊꯣꯔꯛꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯧꯄꯣꯠꯇꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯗꯇꯥꯗ ꯌꯦꯡꯉꯨꯔꯒꯗꯤ ꯂꯧ ꯄꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯃꯔꯐꯨ ꯃꯧꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯗꯥꯏꯃꯨꯛꯇꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯤꯖꯅ ꯂꯧ ꯎꯕ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯂꯧꯃꯤꯅ ꯀꯌꯥꯝ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯂꯝ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕꯒꯦ ꯑꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯂꯧꯁꯥꯟ ꯆꯥꯕ ꯂꯧꯃꯤꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯧ ꯎꯕ ꯃꯤꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯂꯝ ꯂꯩꯖꯕ ꯃꯤꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯥꯅ ꯎꯔꯤꯕ ꯂꯧꯐꯝꯁꯦ ꯂꯧ ꯁꯪꯉꯝꯂ ꯂꯧꯔꯥꯛꯂ ꯄꯔꯤꯔ ꯍꯥꯏꯕ 이사기 로그세 게암도 이깡 독브라 아이 범범제 이싱 자원브라 나트라가 야 그럼바 강로우라 그땅 꽃바 자가다 레이브라 하이므나 심으싱제 심으시고 코이나 강도범다 갈레 이사나 마시 아이 이사나 강접 로미 야르 삼점나 마타마마기 타니기 로 우비몽구나 타바
1: 얌
0: 스마트 오이나 코기 얌나 아이토이 싱도이나 데이바 마타마마타레 아두가 로이나 로이나나 사이언티스트스나 엑스퍼싱나 하레이바 바우타싱제 아생바 니옴니티 강로나 사피바 마다카타 마루오이나 로미 야마기 그노다 오이타가디 호주 마탐기 로이나나 마탐가 톨레 마루오이나 라이바 코기 스마트폰 나트가티 리오타바 아두가 소셜 미디어기 케노미 암시 텔레비전 니앙바 유튜브 니앙바 시군바수 암나 시 테크놀로지기 코기 마탐 이라 암라 아브니나 아이 파마라 마네레 마탐데 스마트폰 엔달 토부감바 아두가 디파멘메다 살라가 코이나 헤타 디파멘두데 레디바 코이 스킴싱 마두 타나루바 넘바 나트가 마두기 케노루 코이나 고동사부도 로토풍감바 홍미 암기 군첸 마마타우타레 마시다디 아이나 탐전닝세 하나 이탄이 탄다 토롬발로 위캉론제 마시 아이 와칼다디 키탄 탐드니 또 사기 수도 비올로이나 로이나나 아 로미에 모이 바타르가디 아 거기 이제 클러스터 오이나 나트가 그룹 오이나 나트가 거기 오르가나이제이션 오이나 레이비바 키마타 모이레나 칼리 거기노 하브디 아이기 작통기 담었다 아이기 가리구마 다카 레이바 마기 놀리스탄 비기 칸데 सरकारगी कानाबा खोगी पीरीबा स्कीम यामसी कानाबा लोन नबनि खंगदे बैंक तेकी क्रेडिट लोन नबनि खंगदे सेमी यामसी तो मतमदे इंडिविजुअल ना गमदा मतम नि कोइरे अन ग्रुप वने लेरे कांददी ग्रुप की एडवांटेज याम लेरे अदुगा बरु वइना को इंडिया की अनुभव विकसित भारत की कमाई ओन दजु लोमी सिंगबु पुंसल लिंगका मोगी राइट की दमकता फाइट तो मतम ओइरे न खजे लोइनना सिना खोगी सरोपा खोगी लोमी रोंगी साइतगिनी अदुगा मथक तो अप्रोच ता लाइब्रेरीबा खोगी department state ki department aduga central gi institute miam university miam amado koi extension agency oina library ba krisi bigyan gi anda gumba makoi sing punamak asigi di asoba thodang oiri makoi da asoba challenge ni habedi climate change la apna koi karamba kanabar kanglo natra ga matam ni watugina lomi singi da makta lady ba makoi na anoba knowledge pir ka kari anoba paujen pir ka adu khuda khuda ki hoiba climate ka weather ka bari hoiba adu gumma yang da pir ba matam sida farmers ka khusam na sala ka da mai mai pak pak koi lamdam ka sada khugi chakot pale ba moi er ka doi de aduna matangstaju amukhara hena panjarabada expert amor gadi expert amagi sap saba kangmondo farmers pibi haisina aina haijari sida pd habagi natajaba
1: hoi
0: koi gi lomi amada karama makhal ge training pigani karam makam da training pigani kari karam ba paujen pigani haibase koi gi training tawri ni hakra koi gi haki obna taba yamna puksel sengna
1: hoi hoi
0: तोपतेगी मथक थंगबा खोइदि लाइबा खोइदि तसेंगना इमाइपा लोमीगी इमा मामा मापानी गार्जेन नेना बुलोबियाय हारी बक इनोसिंगसना खोइगी डिपार्टमेंट दले बिरिबा मथक तोंगद ले बिरिबा आइसारे ले बिरिबा नत्रक कृषि विज्ञान केन्द्र ले बिरिबा खोइगी लो सिमुइ दमकतदि चलु रो आना खोइजे सैलरी चाना खोइ तोलोब चा लेबा खोइसिंगसना यामना फजबा खोइगी मियेंग अमादा खोइगी लोमी सिंगजु लोइना बिगिदों मतम मतम गोइबा यामना तसेंग तसेंगबा सुनारबा मतम गो सानारबा एडवाइस दु स्किल दुगा लोइन लोना पाउ पीबी द पिहन जनिङि लोइना लोइना ना खगि साइंटिस्ट के साइड तगी अदु युनिभर्सिटी के साइड तगी अनो नो ब रिसर्च तरोगा खगि नोंजु नोंसा गि सिदगी खगि होंगि बा कैनो सिदगी ङा थोपङ ङा बदु ब टेक्नोलोजी मेया वैरायटी मेया एडवाइस एडवाइजरी मेया अदुगा सब साबा मागि रिकमेंडेशन मेया पिहन जनिङे ना थमजगे
1: अखैगि आइङासागि हुजिक लैदे इब फिबम सिदिदा अखैगि लौमि सिमि सिंचिना मसिगि सोलुसन जे इदाय लाइब मोंगदा अदुग मयाम ओइन पुल पुरपयाब मोंग दि करी करी लै लैगदि डाक्टर
0: सि खैना लौमि सिलाव सिंगदा एडवाइस वना हाना जो इम्फाल वेस कुम्बा अदुग इम्फाल ईस्ट कुम्बा बिष्णुपुरबा खतंग अखैगि एग्रीकल्चर गि कैनोसिदा खतंग मांगजिल ओइना सलिबा थोबाल डिस्ट्रिक्ट कुम्बा सुमबगि बेली डिस्ट्रिक्ट सिंगसिदा दि अदुम सिंगि डिस्ट्रिक्ट सिंग दसो दुम लैरा मनि सिगि लैजु लैरेना आइ वाखल अखैगि आइसागि केबीके सिंग लैबा सुम केनो जगा ददि अखैगि क्लस्टर अप्रोच नत्रगा एफआईजी फार्मर्स इंटरेस्ट ग्रुप ओनत्रगा फार्मर्स क्लब ओनत्रगा सेल्फ हेल्प ग्रुप ओनत्रगा फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ गुम्बसे मसिगि नत्रगाना एफआईजी गुम्बसी मॉडल जे सिगुम्बा मॉडल सिदा पुंजल लगा तारगदि अखोगि फार्मर्स की पोथो अखोना लौ लौ सिगुबा तोलिस अकोन अरोयबदा खोइना पोथोक तो पुथोगा खोइ मदुदि सेंदोंग फंगा दोइने हानगि लौ सिगुबगि आइगे सहीयमगि थारिब लबु लमांग द थारिब मही मरोंग सिंगदो मदु लोगा आइ जही सुपा मु पथारगा लेबगि मतम दुना त्रबन्ना थारैबा ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛ ꯆꯥꯛ ꯊꯟꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯣꯟꯅꯖꯅꯕꯁꯨ ꯊꯝꯍꯧꯕ

0: Padma Award Yanthokre Manipur gi saknareba Nat Sankirtan gi laikhidraba Guru Yumnam Jatra da Padma Sri Piduna kai khumna khre amasong laibak sigi miyam da petroleum gi pothok singama di LPG gi award pa lehendana ba oil marketing company singa leptana honari मुख्यमंत्री युनाम खेमसान हायरी पुलिस फोर्स की मपांगल हेंगेल हलब मतमदता राइजर सी तंगदु लैताना लैबंगमगनी वाफम सिंह सी इंफाल गे हानबा मणिपुर राइफल्स के पेरेड ग्राउंड दा असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस स्कीम गे मखादा राइजर पुलिस ना सिजनना बगारी मसाम दिया सोबा पुन्ना समरी हुमबुद्रा तरे खुसि नबगी थरमदा मुख्यमंत्री ना फोंदोखिबनी मुख्यमंत्री नंग सिलम थाखिबा गारी सिंह दुगी मनुंगदा हेरो मोटर साइकिल सामा बोलेरो B639 कुंथ्रामापन बोलेरो नियो यांखई टाटा योदा हुमबुद्रा मरी माइन प्रोटेक्टिव वेहिकल तरा टाटा ट्रक कुन टाटा 407 कुंथ्रा महिंद्रा बस कुन बुलेट प्रूफ रक्षक हुमफु वाटर टैंकर गाड़ी तरामापन बोलेरो कैंपर यांखई अमसुंग HMR गाड़ी मंगा याउरी ngasiya thokiba gari singa dugi apunba gi sada yangkhai marina singi jila singda madilem horiba sada niphutaru aduna tampaki jila singda sizinagani hairi sri kemsana makata na thoromadu da hai raija police na sizinana ba anoba makhal gi gari sing khusina ba sina lamda masigi ngak sel gi lamda henna khumang soksil halagani khuda khuda ki oiba thokdoga thok sing laksin bada gari singa sina chawna mateng pang lagani mangna hai kendra sarkar gi griha mantraloina mamang sahi gi october kuntra ma thoida पुलिस मॉडर्नाइजेशन तौनाबगीदमक लुपा कोटी 146 लाख 80,000 की सेनफम राइजसिद पिरखी मसिमक सरकार नंगाक्सेगी लमदा अहेनब मिजें थमली हाइबदुगी मयक लारब खुदमनी मखातानासु अहेनब इंफ्रास्ट्रक्चर कया हबसिंदुना पुलिस फोर्स की मपांगल हेंगेरहनब होदरी मुख्यमंत्री नहाय
1: कलिंग बलेबा कमदा पुलिस फोर्स मपांगन कंदन लेबा तुगी शांति रक्षा पडपगमोय अदुना सरकार असिना पुलिस की मपांगन कन्नबा होनबदा अंगम थाकता मतेंग पांगनी याइबसि मै थमजगे दुलु लुलु लुलुना मणिपुर की पुलिस लो एंड ऑर्डर नाक पद नतना अजोब थोगां के असलोरी सानबगी लंबीदा मणिपुर की पुलिस की मन थंबत नतना स्टेटस की मन पुदरलाई अदुम वायलेंस एक्टिविटीज में आमा प्रजा शिक्षण किया देगी तो बुदो तो भी गनु थब खुदे मत वरी सानगे आवंग आतनी अदुना एनी काइन एजुकेशन तो भी मत दमदा वायलेंस की मोटिव तो भी गनु
0: थोरमदुद सरुग यारदुना गृह मंत्री गोविंदास कोंथौ जमना हाय सरकार हायबसे एकय पुमना मंगन सेमबनी मरमदुना एकय पुन होनमिना दुना लमदम असी शांति लेबल लमदम अमो हेलसी मांगना हाय सिक्योरिटी फोर्स का मियाम गगी मरकता अफब मरी लेरब मतमदा खुदोंथिबा थौदोक थोलकदब कयाकन बंगमगनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गी लिसिंग मखा दलेबासी गी सिक्योरिटी फोर्सिंग हेना मपांगल कनखल हना बहोनरी श्री गोविंदास न हाय
2: सिक्योरिटी फोर्सेस सिंगी मॉडर्नाइजेशन भारत की मफम खुदिमक्ता पांथोक पगमना और ऑनरेबल डीजीपी मणिपुर की प्रपोजल मखादा मसीग सिगुमलबा अमुक्त थोखिद्रिबा अनप्रेसिडेंटेड ओबा पुलिसिंग अमुक हेना पांगल हेंगनानबा मखोय की थौना हेंगलननबा असुक्यामबा गारी असी मोबिलिटी लैननबा येनथोपा की थौरमम पांथोपा मनजबनी
0: ngasi thorom aduda upa mukhyamantri Losi Dikho mantri Singh MLA Singh chief secretary security advisor senior police officer Singh army amsung CRPF ki makok thongbo officer Singh yauna tongan tongan ba security agency Singh gi mehu Singh sharu ya khi mukhyamantri Yunam Khemsan ngasi rajya gi grihamantri Gobindas Konthau Jawiyam yauna sarkar gi makok thongbo officer Singh ga unaduna national highway Singh da ayet apan yaudana pochei puthok pusin tawba yana ba gi matang da kupna khana khre मसीगीदमक पाइखट फमथोक पथबक सिंग पाइखनब सुखनखी सरकार असिना मियामदा नोंगद तंगाइ फदन चंगब पोलम सिंग मरांग काइना फंगनब सु अकनब थबक लोखली हायरी मणिपुर द थोकलिबे इरांग असिगी वारोइसिन पुरकनब अमदी फाजिनदुन लैरिब कांगलुप अनिगी मियोइ सिंग थादो उ हायब दाबी तौरदुनंग असिलमदम असिद लैरिब येलहो फुरुप सिंग ना वकत खोंगसर मचत ख्रे नगा पीपल्स यूनियन इम्फाल न सिंदुना इम्फाल जिल्ला गी मनुंग चन लैब न्यू चेकोनगी ट्राइबल मार्केट तगी नागा मितई अमदी मितई पांगल मियामना सरुक याब खोंगसर अदु मुख्यमंत्री गी बंगलो तमना लाखी अदु मोइना मा खोंगसर अदु इम्फाल गी कोनुंग ममांग द सिक्योरिटी फोर्सिंग ना थिंग बपी दु ना मखाताना सरहनखिदे खोंगसर अदु द सरुक याखिब सिंगना मिचा मियाम द नोंमै कापसिन दुना अकी अखंग पिबगी थोंग जथब यानिंगदे उख्रुल गी टीएम कसोम द सथखिबे एम्बुस के सुम्बो वायल पुथो

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं आप। हर सिंगार का ये सफर लेकर आज की रात माधुरी है आप सभी के साथ। अक्सर हम बात करते हैं प्यार की, तो प्यार क्या है? प्यार मानवीय संवेदनाओं का सबसे सुंदर और गहरा रूप है। अक्सर लोग ये सवाल भी करते हैं कि क्या प्यार की कोई उम्र है। वास्तव में तो ये है कि प्यार किसी कैलेंडर की तारीखों या फिर चेहरे की झुर्रियों का मोहताज नहीं होता। ये एक ऐसा एहसास है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक अलग अलग रूपों में हमारे साथ चलता रहता है।

लता और मनमोहन सिंह की आवाजों में आपने ये गीत सुना फिल्म वारिस से। बचपन में प्यार का जो रूप होता है वो निस्वार्थ होता है और बहुत ही मासूम होता है। एक बच्चे का अपनी माँ के गोद के लिए तड़पना या फिर पिता की उंगली थाम कर चलना प्यार का पहला पार्ट होता है। यहाँ प्यार की उम्र केवल कुछ महीनों या साल होती है, जहाँ सुरक्षा और ममता ही सब कुछ होता है। लेकिन जैसे जैसे आप देखेंगे उम्र बढ़ती है, बच्चा किशोरावस्था में कदम रखता है, प्यार में आकर्षण और रोमांच जुड़ जाता है। और ये वो उम्र होती है जब दिल की धड़कनें किसी खास के नाम पर तेज होने लगती हैं, और अक्सर लोग इसे कच्ची उम्र का प्यार भी कहते हैं।

0: फिल्म आए दिन बहार कैसे ये गीत सुना आपने लता और महेंद्र कपूर के आवाजों में संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का
1: मन की बात है जन जन की सभी की कुछ अपनी सी संघर्षों के कुछ किस्से कहानी कुछ सफलताओं की अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत की महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं अपने सुझाव नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात
0: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये सफर है हर सिंगार का और आज हम इसमें बात कर रहे हैं कि क्या प्यार की भी कोई उम्र होती है बात हो गई कि बचपन का प्यार कैसा होता है और किशोरावस्था का क्या है और अब हम आ गए हैं युवावस्था में तो प्यार इस उम्र में प्यार समझदारी और स्थिरता की तलाश में रहता है यहाँ व्यक्ति सिर्फ चेहरे से नहीं बल्कि विचारों और फिर भविष्य के सपनों से जोड़ता है ये उम्र साथी के साथ जीवन बिताने के संकल्प की होती है लेकिन ये बताएं कि क्या प्यार यहीं रुक जाता है नहीं बिल्कुल नहीं आगे क्या होता है ये भी बताएंगे इस गीत के बाद जो हम लेकर आए हैं आपके लिए फिल्म घरोंदा से
2: एक दीवाना शहर में
3: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

जी हाँ, आप जुड़े हुए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और ये कार्यक्रम है हर सिंगार का, जिसमें आपके साथ मैं हूँ माधुरी, और हम बात कर रहे हैं प्यार की उम्र की, प्यार की असली परीक्षा, और उसकी सबसे खूबसूरत जो चीज़ है वो बुढ़ापे में नज़र आती है, जब शरीर साथ छोड़ रहा होता है और याददाश्त भी धुंधली होने लगती है, तब एक दूसरे का हाथ थामे बैठना ही प्यार की पराकाष्ठा हो जाती है। झुर्रियों से भरे हाथों को चूमना और फिर बिना कुछ कहे एक दूसरे की तकलीफ को समझ लेना ही ये बताता है कि प्यार कभी बूढ़ा नहीं होता।

ये प्यारी सी कव्वाली सुनी आपने मन्ना डे की आवाज में फिल्म वक्त से। समाज अक्सर प्यार को उम्र की सीमाओं में बांधने की कोशिश करता है, पर यह हर उम्र में नया, ताजा और प्रासंगिक बना रहता है। यदि दिल में किसी के प्रति सम्मान है, परवाह है और समर्पण है, तो प्यार हर दौर में जवा रहेगा। प्यार तो वो अमर झरना है जो जीवन के हर पड़ाव पर इंसान को जीवंत बनाए रखता है।

फिल्म बहार आने तक से गीत सुना आपने और हरसिंगार का ये कार्यक्रम अब यहीं तक। अब से कुछ देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म भूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। गृहमंत्री अगले कुछ दिनों में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सुरक्षा से संबंधित बैठकें करेंगे। सूत्रों ने बताया कि वे आज देर रात राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे और कल सुबह बीएसएफ की सांचू सीमा चौकी का दौरा करेंगे, जहां वे सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
1: High international crude prices and
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित

0: वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
1: फ्यूल, फर्टिलाइजर एंड फॉरेन एक्सचेंज।
2: इस बीच नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया। श्री प्रधान ने देश भर के सभी उपराज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। श्री जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। नेपाल में मौसम विभाग ने तराई क्षेत्रों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी तराई और लुम्बिनी क्षेत्र में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। नेपालगंज में भेरी अस्पताल में गर्मी से जुड़ी बीमारियों से करीब 100 मरीज रोज पहुंच रहे हैं। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की आशंका है। वियतनाम के दानांग में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। President Draupadi Murmu today conferred Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the Civil Investiture Ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, 2 were conferred with Padma Vibhushan, 6 with Padma Bhushan and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honoured with the Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award. The legendary Indian violin maestro Dr. N. Rajam were also honoured with Padma Vibhushan. During the ceremony, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Union Ministers Amit Shah, Gajendra Singh Shekhawat and H.D. Kumaraswamy were also present on the occasion. In Jammu and Kashmir, all tourists stranded in cabins of the Gulmarg Gondola ropeway were rescued safely after a major technical snag halted operations at the famous tourist resort. Officials today said more than 300 tourists were trapped inside 65 cabins of the cable car, some hanging nearly 500 feet above the ground, triggering panic among tourists, including women and children. Emergency evacuation protocols were activated immediately. A massive 7-hour rescue operations was launched jointly by teams of NDRF, SDRF, Jammu and Kashmir Police, Army's Chinar Corps and local administration. All passengers were brought to safety without any injuries. Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha said he monitored the rescue operation continuously and directed senior officials, including the DGP, to oversee rescue efforts on the ground. Chief Minister Umar Abdullah announced a probe into the malfunction and said actions would be taken if any lapses were found. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has launched a set of strategic portals and initiatives aimed at strengthening the MSME ecosystem, enhancing last mile

आप जुड़े हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल से 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। चलिए शुरू करते हैं सफर गीत मेरे मनमीत। साथ हूं आज मैं आपके माधुरी। गीत मेरे मनमीत में सुनिए सदाबहार फिल्मी गीत, वो भी बिना रुके।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ट्यून किया आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये सफर जिसे आप सुन रहे हैं वो है गीत मेरे मनमीत का, जिसमें हम लेकर आपके लिए आते हैं गोल्डन एरा के गोल्डन गीतों को, वो भी बिना रुके।

और इसी के साथ गीत मेरे मनमीत का ये सफर यहीं समाप्त होता है और दीजिए माधुरी को विदा। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। गृहमंत्री अगले कुछ दिनों में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सुरक्षा से संबंधित बैठकें करेंगे। सूत्रों के अनुसार आज सुबह बीएसएफ की सांचो सीमा चौकी का दौरा करेंगे वे, जहां सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र व्यवस्था को मजबूत करने तथा ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
1: High international crude prices and
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
1: Fertilizer and foreign exchange.
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सी मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि 22 मई तक

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं और ये सफर है निशिगंधा का। सैर कर दुनिया की गफिल जिंदगानी फिर कहां, जिंदगी कर कुछ रही तो ये नौजवानी फिर कहां। ख्वाजा मीर दर्द का ये शेर और इन पंक्तियों में बहुत कुछ छुपा है। इन पंक्तियों ने हमेशा ही मुझे आवाज दी, हिम्मत दी, उठकर चल पड़ने को साहस दिया। कुछ तो था इन पंक्तियों में जिसने हमेशा मुझे जगाया है। आज सोचा कि इन पंक्तियों के मतलब को आपसे भी साझा करूं निशिगंधा के बहाने।

जी हाँ दोस्तों, जीवन एक यात्रा है। इसे छोटे छोटे दायरों में जीने की बजाय खुलकर जीने का नाम ही तो जिंदगानी है। सैर कर दुनिया के गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, ये पंक्ति मात्र नहीं है बल्कि जीवन का दर्शन है। ये हमें आमंत्रित करती हैं कि दुनिया की सैर करो, उसके रंग रूप, संस्कृतियों को, स्वादों को, अनुभवों को अपना लो। जब तक सांस है तब तक जियो, बिना किसी बंधन के, बिना किसी डर के जियो, बिना किसी पछतावे के जियो, क्योंकि ये जिंदगी फिर नहीं मिलेगी। जी हाँ, फिर कहाँ मिलेगी ऐसी जिंदगानी।

देखिए ना, आज का हर इंसान बहुत से नियमों से, अपेक्षाओं से और भय के पिंजरे में कैद है। समाज कहता है ऐसा करो, वैसा मत करो। फिर धर्म कहता कुछ और ही है। परिवार कहता है स्थिर हो जाओ, बस जाओ। लेकिन गाफिल जिंदगानी बंधनों से मुक्ति का नाम है। इसका मतलब संकीर्णता से मुक्ति है। ये कहती है कि दुनिया का हर कोना अद्भुत है। पहाड़, समुद्र, जंगल, शहर, गांव, अलग अलग लोग, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग खान पान, सब कुछ देखो। दुनिया घूमने का मतलब केवल पर्यटन नहीं है, ये अनुभवों का संग्रह है। जितना आप ज्यादा लोगों को जानेंगे, संस्कृतियों को पहचानेंगे, आपका अनुभव, आपका ज्ञान उतना ही बढ़ता है। और ज्ञान ही इंसान में समझ को बढ़ाता है, इंसान को असल मायनों में इंसान बनाता है।

यादें छोड़ जाता है और बहुत सारी यादें वो समेट भी लाता है। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ और ये सफर है निशिगंधा का। आज हम बात कर रहे हैं उन खास पंक्तियों की जिसमें सचमुच जीवन का दर्शन छिपा है और वो पंक्तियां हैं सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहां, जिंदगी अगर कुछ रही तो जवानी फिर कहां। और लोग घूमते हैं देश विदेश न जाने कहां कहां और बटोरते हैं ढेर।

फिर सारे अनुभव। जब आप इटली के रोम में कोलेजियम के खंडहरों के सामने खड़े होते हैं तो इतिहास जीवंत हो उठता है। जापान के चेरी ब्लॉसम के नीचे बैठकर साकुरा देखते हैं तो क्षण भंगुरता का सबब मिलता है। जब राजस्थान के रेगिस्तान में ऊंट की पीठ पर सूर्यास्त देखते हैं तो लगता है कि जीवन कितना विशाल है। हर जगह इंसान की कहानी अलग अलग है, फिर भी पता है क्या एक है। एक चीज एक है कि वो एक ही चाहत में घूमता है और वो चाहत है खुशी की।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये सफर है निशिगंधा का, जिसे लेकर आज की रात माधुरी है आप सभी के साथ। और आज टटोल रहे हैं कुछ शब्दों के अर्थ निशिगंधा के बहाने। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहां, इस लाइन में छुपा है जिंदगी का फलसफा, जिसे ढूंढ रहे हैं हम, जिसे कह रहे हैं हम, जिसे गुनगुना रहे हैं हम और जिसे गा रहे हैं हम।

0: रात कभी कभी
1: गाफिल जिंदगानी यानी बेसुध बेखबर सच्ची जिंदगी तो तब शुरू होती है जब हम तेरा मेरा का भेद मिटा देते हैं ये जिंदगानी हमें सिखाती है कि सुख वस्तुओं में नहीं अनुभवों में है नया खाना खाना नई भाषा सीखना अनजान लोगों से दोस्ती करना गलतियां करना और फिर उन गलतियों से सीखना यही तो जीवन है अनुभवों का असली नाम ही जीवन है और जीवन में हमें तरह-तरह के अनुभव लेते रहने चाहिए

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

जी हाँ, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। सफर है निशे गंधा का और हम बात कर रहे हैं सैर कर दुनिया के गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ। इसी सफर में फिर कहाँ, ये सवाल बहुत गहरा है। मौत के बाद क्या, कोई नहीं जानता। स्वर्ग नर्क की कहानियां तो सिर्फ कहानियां ही हैं, जो कुछ है वो यही है, इसी धरती पर है, इसी वक्त में है। अगर यही नहीं जिया तो फिर कहाँ जाना है, अगर यहाँ नहीं जिया तो फिर कहीं और जाकर भी क्या मिलने वाला है। कई लोग कहते हैं पैसे नहीं है, समय नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि कभी भी कोई भी समय परफेक्ट नहीं आता कि हाँ सब कुछ बढ़िया होगा और फिर हम कहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होता। समय को अपने लिए परफेक्ट बनाना पड़ता है और इसके लिए आप ही को प्रयास करना पड़ेगा। ये जो समय बहुत तेजी से भाग रहा है ना, इसे थोड़ा रोक लीजिए अपने लिए।

ये जीवन दर्शन हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ कमाने और खर्च करने वाली मशीन नहीं हैं, हम महसूस करने वाले, अनुभव करने वाले प्राणी हैं। इतनी सुंदर धरती है, हमारी आत्मा को हवा चाहिए, रोशनी चाहिए, नई नई सुगंध चाहिए। जब तक हमारा शरीर साथ दे रहा है, तब तक सैर करो। अंत में यही कहना चाहूंगी, सैर कर दुनिया के गाफिल जिंदगानी का मतलब है खुलकर जीना, बेखौफ जीना और प्रेम से जीना। आप अपने अनुभवों को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उन्हें आकार दे सकते हैं, कोई कहानी कर सकते हैं, कोई कविता या गीत बन सकती है आपका अनुभव, किसी को राह दिखा सकती है, रिपोर्टाज बन सकती है। और ये जो इतना सुंदर चित्रकार है, उसने जो ये चित्रकारी की है हमें अलग अलग अनुभव देने के लिए, हमें जीवन का दर्शन देने के लिए, तो हमें उन चीजों को देखना और समझना चाहिए। इसी के साथ दीजिए माधुरी को निशिगंधा से इजाजत। ये आखिरी गीत निशिगंधा का आप सभी के लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजन को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवस्था को मजबूत करने तथा ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
1: High international crude prices and
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
1: Fertilizer and foreign exchange.
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सी मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के राजस्थान दौरे पर रहेंगे। उनका पहला कार्यक्रम सुबह 10:30 सीमा सुरक्षा बल की 179वीं बटालियन की सांचो बॉर्डर चौकी पर होगी। कार्यक्रम के दौरान एक प्रहरी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और महिला बैरकों का वर्चुअल उद्घाटन किया जाएगा। गृह मंत्री सीमा पर तैनात BSF जवानों से बातचीत भी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि 22 मई तक ग्रीष्मकालीन फसलों का बुआई क्षेत्र 86 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष करीब 2.5 लाख हेक्टेयर की वृद्धि दर्ज हुई है। धान की बुआई 31 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में की गई, जबकि दलहन की खेती 27 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में हुई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन का विमोचन

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर. रात्रि के इस वक्त हम आपके लिए लेकर आते हैं गीत सुहाने, जिसमें आप सुनते हैं ओल्ड क्लासिक्स. और आज की रात आपके साथ मैं हूं माधुरी.

ये जिंदगी तो ऐसी ही है, किसी के लिए मुश्किल है तो किसी के लिए आसान है। ये गीत सुना आपने फिल्म CID से मोहम्मद रफी और गीता जी के आवाजों में। और अगला गीत आपके लिए ये रहा।

नवरंग फिल्म से ये प्यारा सा गीत आप सभी सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज में, संगीत सी रामचंद्र का।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ट्यून क्या है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये सफर है गीत सुहाने का जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं ओल्ड क्लासिक्स।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर. यह सफर है गीत सुहाने का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं ओल्ड क्लासिक्स.

0: भाई किसी का साथ ही ऐसा हो कि मन कर जाए कि दिन और रात बस उसी के साथ रहें, तो क्या बात है। और ये जो बात हुई, ये हुई फिल्म मिस बॉम्बे में, और आवाज़ें थीं सुमन और मोहम्मद रफ़ी साहब की। हंसराज बहल का संगीत था। और अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं अब, जो हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए फिल्म चलती का नाम गाड़ी से।
1: मगर आपने तो कहा था कि तुमने तो कहा था कि कुछ काम वाम करने का है। यहाँ तो कुछ गाड़ी वाली भी नहीं दिखाई देती। मैं मरम्मत किसकी करूंगा।
2: हरी,

0: गाड़ी की मरम्मत के सिवा और कोई दूसरा काम नहीं हो सकता।
1: और भला क्या काम हो सकता है?
0: और बहुत से काम हो सकते हैं।
1: जैसे?
0: कर सकोगे?
1: मैं हर काम कर सकता हूँ।
0: सोच लो।
1: सोच लिया।
0: और अगर नहीं कर सकी तो?
1: हार मान जाऊंगा।
0: ऐसे नहीं, कोई शर्त होनी चाहिए।
1: क्या?
0: हाँ, अगर तुम हार गए तो ये टोकरी उठाकर सारा दिन साफ घूमना पड़ेगा।
1: टोकरी?
0: मंजूर?
1: मंजूर। काम तो बताइए।
0: जरा सोच तो लूं।
1: हाँ।
0: वो देखते हो? वो?
1: हाँ हाँ।
0: क्या?
1: मुर्गी?
0: हाँ, पकड़ लाओ।
1: मुर्गी?
0: हाँ।
1: ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, अभी पकड़ता हूँ। ये लीजिए।

कुछ गाने होते हैं ना कि जब भी सुनो तो मन जो है रिफ्रेश सा हो जाता है, फ्रेश कर देता है मन को, तो ये भी कुछ ऐसा ही है, ऐसे सेंटर फ्रेश की तरह इसकी भी टेस्ट आती है इस गाने की। और ये जो गीत था, ये था फिल्म चलती का नाम गाड़ी से, आवाज़ें किशोर कुमार और आशा जी की, और संगीत एस टी बर्मन साहब का।

फिल्म अलबेला से ये गीत सुना आपने चितलकर लता जी और कोरस की आवाज में संगीत चितलकर रामचंद्रन का

फिल्म मल्हार से ये गीत आप सुन रहे थे लता और मुकेश की आवाज में। अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए फिल्म बैजू बावरा से लता जी की आवाज में।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। आज शाम राष्ट्रपति गंगतोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। कल राष्ट्रपति नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी और वहां तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। इसी दिन वे गंगतोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगतोक के पालजोर स्टेडियम में आयोजित समारोह में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के राजस्थान दौरे पर रहेंगे। उनका पहला कार्यक्रम कल सुबह 10:30 सीमा सुरक्षा बल की 179वीं बटालियन की सांचू बॉर्डर चौकी पर होगा। कार्यक्रम के दौरान एक प्रहरी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और महिला बैरकों का वर्चुअल उद्घाटन किया जाएगा। गृह मंत्री सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों से बातचीत भी करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया है। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की व्यवस्था को मजबूत करने तथा ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
1: High international crude prices and
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन 3 महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
0: नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइंस के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन का विमोचन आज नई दिल्ली में किया जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा भी मौजूद रहेंगे। विज्ञान और केंद्रीय प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में स्पेन के विज्ञान, नवाचार और विश्वविद्यालय मंत्रालय की महासचिव डॉक्टर ईवा ओर्तेगा पोइनो के नेतृत्व में वाले उच्चस्तरीय मंत्रिमंडल से मुलाकात करेंगे। बैठक में भारत और स्पेन के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई का ये सफर लेकर मैं माधुरी हूं आज की रात आप सभी के साथ।

तूने खलवत में कभी ये भी तो सोचा होगा तू ना होगा तो मेरे दिल में अंधेरा होगा आंख में ठहरे समंदर ये पता देते हैं दिल के सहरा पे कोई अब्र तो बरसा होगा।

दिन को भटकूंगा तेरी प्यास का सहरा बनकर रात खो जाऊंगा तुझ में तेरा साया बनकर मैं की मंजिल था कभी तेरे एक ख्वाब की अब रह गया हूं तेरा एक भूलता रास्ता बनकर उसने अच्छा किया ठुकरा दिया मुझको वरना खुद उसे जीना ही पड़ता मेरे जैसा बनकर

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. ये सफर है रात सुरमई का, जिसे लेकर आज की रात माधुरी है आप सभी के साथ.

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से,
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड पर।

जी हाँ, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और ये सफर है रात सुरमई का, जिसे लेकर आज की रात मैं माधुरी हूँ आप सभी के साथ। उम्मीद करती हूँ कि इस सफर के गीतों गजल आपको पसंद आ रहे होंगे और आपकी रात भी हमारी रात की तरह अच्छी गुजर रही होगी। और कई बार बातों ही बातों में ऐसी बातें हो जाती हैं कि लगता है कि खामोशियों को सुनना शुरू कर दें। कुछ हिस्सा ही है अगला गीत, कुछ ना कहो।

खुशबुएं लहरें समंदर पे कोई बात होगी प्यार में आगे बढ़ेंगे तो प्यार की कोई किताब होगी।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। राष्ट्रपति आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। आज शाम राष्ट्रपति गंगतोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। कल राष्ट्रपति नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी और वहां तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। इसी दिन वे सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगतोक के पालजोर स्टेडियम में आयोजित समारोह में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के राजस्थान दौरे पर रहेंगे। उनका पहला कार्यक्रम आज सुबह 10:30 बजे सीमा सुरक्षा बल की 179वीं बटालियन की सांचू बॉर्डर चौकी पर होगा। कार्यक्रम के दौरान एक प्रहरी सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा और महिला बैरकों का वर्चुअल उद्घाटन किया जाएगा। गृह मंत्री सीमा पर तैनात BSF जवानों से बातचीत भी करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की व्यवस्था को मजबूत करने तथा ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण के फैलने के बाद एयरलाइंस के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन का विमोचन आज नई दिल्ली में किया जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू पुस्तक का विमोचन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में स्पेन के विज्ञान, नवाचार और विश्वविद्यालय मंत्रालय की महासचिव डॉ. ईवा ओर्तेगा पाइनो के नेतृत्व वाले उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। बैठक में भारत और स्पेन के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने सर्कुलर इकोनॉमी, डिजिटल परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उन्नत सामग्री, डिजिटल हेल्थ और अंतरिक्ष विज्ञान जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया। नागालैंड के मुख्यमंत्री और नागा पीपल्स फ्रंट के अध्यक्ष नेफ्यू रियो ने नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के NPF में विलय को निर्वाचन आयोग से औपचारिक मंजूरी मिलने का स्वागत किया है। कोहिमा में पार्टी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री रियो ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि आयोग ने इस महीने की 4 तारीख को विलय को औपचारिक मंजूरी दी है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू की चेतावनी दी गई है। और खेलों में IPL क्रिकेट में आज धर्मशाला में क्वालिफायर 1 मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वहीं कल एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल से होगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली

0: service and dedication. Later in the day, a high-level meeting related to border areas will be held at the BSF sector headquarters in Bikaner. And that is the end of this news bulletin.
1: सौ दशमलव एक मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल. आइए सुनते हैं युगल गीतों का कार्यक्रम हमराही.

रात के 3:11 और 15 सेकंड हुए हैं। सुस्वागतम, आप सभी का स्वागत करते हुए हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, यादें भी क्या हैं और कब बिन बुलाए दस्तक दे देती हैं, और हमें भी जब आपकी याद आती है हम आपसे मिलने पहुंच जाते हैं। ना जाने कौन सी खूबी है तुझ में, जो तू दूर होकर भी दिल के सबसे करीब है। ना जाने कौन सी खूबी है तुझ में, जो तू दूर होकर भी दिल के सबसे करीब है, और दिल कहता है मत तड़पाओ उन्हें, और यादें कहती हैं बस उन्हीं के हो जाओ। तेरी यादों का समंदर कुछ ऐसा है कि हर लहर दिल को छूकर गुजर जाती है। कितनी अजीब है ये दिल की कश्मकश भी, यादें तो उनकी आती हैं और सांसें हमारी रुक जाती हैं।

लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाज में फिल्म पतिता से ये गीत आपने अभी सुना। नशीली आंखों से वो जब हमें देखते हैं, नशीली आंखों से वो जब हमें देखते हैं, हम घबरा के अपनी आंखें झुका लेते हैं। कैसे मिलाएं हम उन आंखों से आंखें, सुना है वो आंखों से अपना बना लेते हैं।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म जाने अनजाने से अभी आपने गीत सुना। वादा नहीं कोई ना ही कोई कसम, वादा नहीं कोई ना ही कोई कसम, फिर भी तुझसे प्यार है और तेरा इंतजार है। तेरे चेहरे की उदासी दे रही है गवाही, मुझसे जुदा होकर भी तू भी बेकरार है। आइए सुनते हैं टैक्सी चोर फिल्म से किशोर कुमार और शैलेंद्र सिंह की आवाज में ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं कारवां फिल्म से मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज़ में।

अक्सर तन्हा चांदनी रातों में, अक्सर तन्हा चांदनी रातों में मन की खामोशी है और दिल कुछ कहना चाहता है। आइए सुनते हैं मन्ना डे और लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में आवारा फिल्म से ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: गजब घूंघट तो जरा ओढ़ो। अरे मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान धड़क पन।
1: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में फिल्म तीन देवियां से ये गीत आपने सुना। इस बारिश पर ना जाओ मेरी आंखों में देखो, इस बारिश पर ना जाओ मेरी आंखों में देखो, दिल के दरिया में कहीं एक तूफान उठा होगा। आइए सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में फिल्म 9 2 11 से ये गीत।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में फिल्म रंगीला रथ से ये भी गीत आप सुन रहे हैं। और इसी के साथ ही हमराही कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। मैं आपके साथ बनी रहूंगी सुबह 6 बजे तक और कुछ ही पलों में सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक की।

0: मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के तहत मंत्री पिछले वर्ष वॉशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। राष्ट्रपति आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। आज शाम राष्ट्रपति गंगतोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। कल राष्ट्रपति नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी और वहां तैनात सैनिकों से बातचीत भी करेंगी। इसी दिन वे सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगतोक के पालजोर स्टेडियम में आयोजित समारोह में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के राजस्थान दौरे पर रहेंगे। उनका पहला कार्यक्रम आज सुबह 10:30 बजे सीमा सुरक्षा बल की 179वीं बटालियन की सांचो बॉर्डर चौकी पर होगा। कार्यक्रम के दौरान एक प्रहरी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और महिला बैरकों का वर्चुअल उद्घाटन किया जाएगा। गृह मंत्री सीमा पर तैनात BSF जवानों से बातचीत भी करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया है। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवस्था को मजबूत करने तथा ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों के निदेशकों के लिए नए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। लगातार 10 वर्ष तक बोर्ड में रहने वाले निदेशकों के लिए विराम अवधि लागू की गई है। इन संशोधनों निर्देशनों में RBI शहरी सहकारी बैंक साधन संशोधन निर्देश 2026 और ग्रामीण सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 शामिल है। RBI ने कहा है कि यह कदम सहकारी बैंकों में बेहतर प्रशासन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइंस के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी की है। DGCA ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन का विमोचन आज नई दिल्ली में किया जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू पुस्तक का विमोचन करेंगे। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में भीषण लू की चेतावनी दी गई है। इस बीच उत्तर प्रदेश के बांदा में तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो देश में सबसे अधिक तापमान में शामिल रहा। और खेलों में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन HS प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत और आयुष सट्टी मुकाबला करेंगे। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड़ अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. President Draupadi Murmu yesterday conferred Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the Civil Investiture Ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, two were conferred with Padma Vibhushan, six with Padma Bhushan, and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honoured with Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award. The legendary Indian violin maestro Dr. N. Rajam was also honoured with Padma Vibhushan. During the ceremony, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Union Ministers Amit Shah, Gajendra Singh Shekhawat and H.D. Kumaraswamy were present on the occasion. In Jammu and Kashmir, all tourists stranded in the cabins of the Gulmarg gondola ropeway were rescued safely after a major technical snag halted operations at the famous tourist resort. Officials yesterday said more than 300 tourists were trapped inside 65 cabins of the cable car, some hanging nearly 500 feet above the ground, triggering panic among tourists, including women and children. Emergency evacuation protocols were activated immediately. A massive 7-hour rescue operation was launched jointly by teams of the NDRF, SDRF, Jammu and Kashmir Police, Army's Chinar Corps and local administration. All passengers were brought to safety without any injuries. Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha said he monitored the rescue operation continuously and directed senior officials, including the DGP, to oversee rescue efforts on the ground. Chief Minister Omar Abdullah announced a probe into the malfunction and said action would be taken if any lapses were found. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has launched a set of strategic portals and initiatives aimed at strengthening the MSME ecosystem, enhancing last-mile credit delivery and accelerating the modernization of rural industries. Speaking at an event in Mumbai to mark the 37th anniversary of the Small Industries Development Bank of India, SIDBI, yesterday, Ms. Sitharaman called for increased focus on the three Fs, that is, fuel, fertilizer and forex, amid the ongoing West Asia crisis, while asserting that the Indian economy remains resilient.
2: The West Asia crisis not only is a diplomatic or a geopolitical issue. For businesses and common people, it can mean higher fuel cost, delayed cargo, costlier shipping, shortage of inputs, pressure on working capital, and uncertainty in export orders. All of them coming together, it's a big challenge, not just for India, for many other countries. We must also recognize that India's domestic economic situation remains positive and resilient even today.
1: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will host the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and Secretary of State of the United States Marco Rubio will participate in the meeting. The ministers will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives and reflect on recent developments in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. Union Minister for Home and Cooperation Amit Shah has reached Bikaner in Rajasthan last night on a 2 days visit. He will attend a series of programs today. The first program will be held at 10:30 a.m. at the Sanchu Border Outpost of the 179th Battalion of the Border Security Force. During the event, a Prahari conference will be organized and women barracks will be inaugurated virtually. The Union Minister will also interact with BSF personnel deployed along the border and encourage the Jawans for their service and dedication. Later in the day, a high-level meeting related to the border areas will be held at the BSF sector headquarters in Bikaner. And that is the end of this news bulletin.
3: सौ दशमलव एक मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल आइए सुनते हैं कार्यक्रम अरुणिमा

सुबह के 4:11 और 10 सेकंड हुए हैं। अरुणिमा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अगर हमारा मन खुश है तो हमें सब जगह अच्छा ही नजर आता है। जमी, आसमां, सब कुछ अच्छा ही दिखाई देता है। इसलिए दोस्तों, अपने मन मस्तिष्क को हमेशा शांत रखिए, जिससे आपका तन भी स्वस्थ रहेगा और आप भी।

अमित कुमार की आवाज में फिल्म तेरी कसम से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, दिल में जो भी बातें हैं वो किसी अपने के साथ जरूर शेयर कर लेनी चाहिए, जिससे कि आपके मन का बोझ भी हल्का हो जाता है।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में फिल्म जोशीला से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, बेकार की दुख चिंता में अपना समय मत गवाइए, क्योंकि जो होना है वो होकर ही रहता है। आइए सुनते हैं मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म सूरज और चंदा से ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर. अरुणिमा में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना. आइए अब अगला गीत सुनते हैं खानदान फिल्म से, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज़ में.

जिंदगी का सफर बहुत सुहाना है दोस्तों, बस ये आपको देखना है कि इसे जीना किस अंदाज में है। आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म अंदाज से ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म जिगरी दोस्त से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों परिस्थिति

स्थितियां चाहे कैसी भी हों, घबराना नहीं है, क्योंकि जिंदगी का असूल है, तुझे गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद है। आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज में फिल्म रेशमी रुमाल से ये गीत।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

किशोर कुमार की आवाज में फिल्म गीत गंगा से अभी आपने ये गीत सुना। दोस्तों, खुशी उन्हें नहीं मिलती जो जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीते हैं, बल्कि खुशी उन्हें मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी जिंदगी की शर्तों को बदल देते हैं। सुनते हैं वक्त फिल्म से आशा भोसले की आवाज में।

दोस्तों इसी के साथ ही अरुणिमा कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर और मैं आपके साथ बनी रहूंगी सुबह 6 बजे तक और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताज़ा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के तहत विदेश मंत्री पिछले वर्ष वॉशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल

0: राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। राष्ट्रपति आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति गंगटोक में आज शाम नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। राष्ट्रपति कल नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी और वहां तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। इसी दिन वे सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में आयोजित समारोह में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। वे आज राजस्थान के बीकानेर पहुंचे हैं, जहां वे 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। आज सुबह वे BSF की सांचू सीमा चौकी का दौरा करेंगे और सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। दोपहर में वे बीकानेर में सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में गृह मंत्रालय और राजस्थान सरकार के अधिकारी, BSF अधिकारी, साथ ही 5 सीमावर्ती जिलों के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की व्यवस्था को मजबूत करने तथा ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। रिजर्व बैंक RBI ने शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों के निदेशकों के लिए नए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत लगातार 10 वर्ष तक बोर्ड में रहने वाले निदेशकों के लिए विराम अवधि लागू की गई है। इन संशोधन निर्देशों में RBI शहरी सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 और ग्रामीण सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 शामिल हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइंस के लिए नई SOP जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. President Draupadi Murmu yesterday conferred Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the civil investiture ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, 2 were conferred with Padma Vibhushan, 6 with Padma Bhushan and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honoured with Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award. The legendary Indian violin maestro Dr. N. Rajam was also honoured with Padma Vibhushan. During the ceremony, Vice President C.P. Radhakrishnan

सुबह के 5:11 और 13 सेकंड हुए हैं। भोर सुहानी कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी का इस्तकबाल करते हैं, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सुबह की बेला है और ऐसे में ध्यान को प्रभु सिमरन में लगाते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा भजन जो गाया है तनुश्री कश्यप शर्मा ने।

दोस्तों, गीत गाते गुनगुनाते जिंदगी का ये सफर बिताते चलो, हंसते मुस्कुराते ये प्यारे से पलों से अपने को महकाते चलो।

जसपाल सिंह और साथियों की आवाज में फिल्म गीत गाता चल से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जिंदगी में आए हैं तो बिछड़े हुओं को मिलाते चलो और मंजिल की धुन में झूमते गाते चलो, बिल्कुल इस गीत की तरह। अनोखी अदा फिल्म से आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज में ये गीत।